इनोंग मासू गा लगले कोरव मासू का रगले नपांग सिंग सु लेंग लगले हौरो नई इमा की कन्हाय पुनसी सिंधा पांग नबा सुखलम उमंगी लंबी नी एक नतिंग खंग कयानी।

0: इबे माँ, थोबी, उठो, देर हो गई है, सुन रही हो ना? जवाब भी नहीं दे रही।
1: सुन लिया माँ, उठ गई हूँ।
0: सुबह की आरती कब की हो चुकी है? मैंने सब्जी की तैयारी भी कर ली है।
1: हाँ माँ, मैं हाथ मुंह धो के आती हूँ।
0: हाँ हाँ, आ जाओ, मैं चौबी बुआ की दुकान तक होकर आती हूँ।
1: जी माँ।
0: 1 किलो मटर लेना है, तुम्हारे लिए भी कुछ खाने को ले आऊंगी। मैं जा रही हूँ। वाह, मेरी बच्ची तो बहुत समझदार है। तुम्हारे लिए दूध लाती हूँ, आज तो गर्मा गर्म पूरियां भी लाई हूँ।
1: अरे वाह।
0: लो, पहले नाश्ता कर लो।
1: हाँ माँ।
0: फिर हम दोनों पढ़ाई करेंगे। देखो, दुकान से लौटकर जब मैंने तुम्हें पढ़ते देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं अंदर से दूध ले आती हूँ तुम्हारे लिए।
1: जी माँ।
0: ये लो, ये रहा दूध, अब पी लो।
1: माँ, गर्मा गर्म पूरी के साथ दूध पीने का स्वाद ही अलग होता है।
0: अच्छा, पहले आराम से नाश्ता कर लो, फिर पढ़ाई करेंगे। और हाँ, खाते समय बातें मत करो, नहीं तो खाना गले में अटक जाएगा।
1: माँ, मेरा तो हो गया।
0: मेरा भी हो गया। तो अब कौन सी कहानी सुनाओ, बताओ तुमको क्या पसंद है? अगर राजा रानी की कहानी सुननी हो तो वो भी अच्छे से सुना दूंगी।
1: माँ,
0: हाँ?
1: वो नहीं सुनना।
0: फिर
1: पिताजी ने हमें कई बार राजा रानी की कहानी सुना दी है। आज मणिपुर के रोंगमई जाति के लोगों की कोई लोक कथा सुनाइए।
0: अच्छा, अगर तुम सुनना चाहते हो तो सुनाती हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा रोने धोने वाली कहानियाँ नहीं आती। जितनी कहानी मुझे याद है उतनी ही सुनाऊंगी।
1: हाँ माँ, जितनी आपको याद आती है उतनी ही सुनाइए।
0: फिर सुनो, बहुत पुराने समय की बात है। मकुई लोंगदी चरानम नाम के गांव में मुइबा नाम का एक राजा रहते थे। उसकी दो रानियां थी, दोनों रानियों से उसके साथ बेटे हुए। पहली रानी को बहुत समय तक संतान नहीं हुई। दूसरी रानी के यहाँ सबसे पहले एक बेटा पैदा हुआ। उसके कुछ समय बाद पहली रानी ने भी एक बेटे को जन्म दिया।
1: माँ, अभी तो आपने कहा था कि दोनों रानियों से सात बेटे हुए थे।
0: हाँ बिल्कुल, बाद में दोनों रानियों से मिलाकर कुल 7 बेटे हुए। समय बीतता गया और सभी बेटे बड़े हो गए। उधर उनके पिता राजा भी अब बूढ़े हो चुके थे, इसलिए वे राज्य का सारा काम अपने सबसे योग्य बेटे को सौंपना चाहते थे।
1: अगर सबसे बड़े लड़के का ही राजा बनने का अधिकार है तो फिर दूसरी पत्नी के बेटे को ही राजा बनना चाहिए, है ना?
0: अरे जरा सब्र तो करो ना, मैं कहानी आगे तो सुना ही रही हूँ।

0: अब कारण सुनो। राजा मुइबा ने अपनी दोनों रानियों को बुलाया और उनके साथ विचार विमर्श किया। तब पहली रानी बोली, मैं बड़ी रानी हूँ, इसलिए मेरे सबसे बड़े बेटे को ही राजा बनाना चाहिए। लेकिन दूसरी रानी बोली, मेरा बड़ा बेटा सातों भाइयों में सबसे बड़ा है, इसलिए राजा बनने का अधिकार उसी का है। इस तरह विवाद बढ़ता गया और दोनों रानियों को समझाना बहुत मुश्किल हो गया। आखिर दोनों रानियों के सभी बेटे राजा मुइबा के ही खून थे।
1: तो फिर माँ,
0: हाँ,
1: ये तो बहुत बड़ी समस्या बन गई।
0: हाँ,
1: तब तो राजा कोई निर्णय भी नहीं कर पाएगा, फिर इसका फैसला कौन करेगा?
0: रुको तो जरा, मैं सब कुछ एक एक करके सुनाऊंगी ना।
1: वाह माँ, बहुत मजेदार कहानी है।
0: अभी तो कहानी खत्म भी नहीं हुई और इतनी दिलचस्प लग रही है तुम्हें।
1: हाँ माँ,
0: अगर मेरी बच्ची को कहानी अच्छी लग रही है तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। लो अब आगे सुनो, ध्यान से सुनना। राजा ने सोचा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कोई फैसला नहीं हो पाएगा। मुझे इसका कोई अच्छा सा हल ढूंढना होगा, जिससे दोनों रानियां भी नाराज ना हो और सातों भाइयों के बीच भी कोई झगड़ा ना हो। उसने एक तरकीब सोची।
1: कैसी तरकीब?
0: ध्यान से सुनो तो सही, मुझे आगे बताने तो दो। एक दिन राजा मुइबा ने अपने सातों बेटों को अपने पास बुलाया।
2: मेरे सातों बेटे, तुम लोग आ गए?
3: जी हाँ पिताजी, हम सातों भाई हाजिर है, आज्ञा दीजिए पिताजी।
2: तुम सब ध्यान से सुनो। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए तुम सातों में से किसे अपना उत्तराधिकारी बनाओ। इसके लिए एक परीक्षा होगी।
3: कौन सी परीक्षा पिताजी?
2: एक राजा सिर्फ अपनी प्रजा की सेवा ही नहीं करता, बल्कि उससे बुद्धिमान और न्यायप्रिय भी होना चाहिए।
3: जी पिताजी।
2: इस परीक्षा में जो सफल होगा वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा, और उस फैसले पर तुम सातों में से किसी को भी ऐतराज नहीं होनी चाहिए।
3: जी पिताजी।
2: ये मेरा आदेश है
3: पिताजी। हम अवश्य आपकी आज्ञा का पालन करेंगे।
2: ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। जब बच्चे अपने माँ बाप की बात मानते हैं तो उन्हें बहुत सुकून मिलता है। एक दिन तुम लोग भी इस बात को अच्छी तरह समझ जाओगे।
3: जी पिताजी।
2: अब तुम सब ध्यान से सुनो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम सातों में से किसे अपना उत्तराधिकारी बनाओ। इसलिए तुम सबको अपनी योग्यता साबित करनी होगी।
3: पिताजी, हमें क्या करना है? कृपया आदेश दीजिए, हम आपके हर आदेश का पूरी निष्ठा से पालन करेंगे।
2: तो सुनो, तुम सब कौब्रू पर्वत पर जाओ और अपने छोटे चाचा चतियों से पूछो कि तुम में से कौन मेरा उत्तराधिकारी बनने योग्य है।
3: जी पिताजी।
2: चतियों, तुम सबको अच्छी तरह जानते हैं, जिसका नाम वे लेंगे, मैंने तुम सबके लिए सात पोटलियां तैयार कर रखी हैं।
3: जी पिताजी।
2: उन्हें साथ लेकर जाना।
3: पिताजी, आपका आदेश सर आंखों पर, अब हम चलते हैं।
0: इस तरह सातों भाई अपने पिता द्वारा दी गई सातों पोटलियां लेकर यात्रा पर निकल पड़े।
3: मेरे प्यारे भाइयों, देखो, हम चाचा चतियो के घर पहुंच गए हैं। चाचा चतियो, आपको हम सबका प्रणाम।
4: आओ आओ मेरे बच्चों, इतनी दूर से आए हो, जरूर थक गए होंगे। पहले खाना पीना कर लो, फिर थोड़ा आराम कर लेना।
3: जी चाचा।

0: उसके बाद बताना कि तुम सातों मेरे पास किस काम से आए हो। महाराज ने तुम्हें यहाँ किसी खास कारण से ही भेजा होगा।
1: जी चाचा जी, आपने बिल्कुल सही समझा। पिताजी ने हमें अपने उत्तराधिकारी चुनने के लिए हमें आपके पास भेजा है।
0: मैंने बिल्कुल सही सोचा था। आज की रात तुम सब मेरे यहाँ बिता लो।
1: जी चाचा जी।
0: सुबह होते ही तुम सातों भाइयों को महाराज के पास लौटना पड़ेगा।
1: जैसी आपकी आज्ञा चाचा जी, हम आपके हर आदेश का पालन करेंगे।
0: सुन रहे हो मेरे बच्चों, अब सुबह हो गई है, बाहर आ जाओ।
1: जी चाचा जी, हम सातों आ गए हैं, अब हमें क्या करना है, कृपया आदेश दीजिए चाचा जी।
0: बरामदे में मैंने तुम सबके लिए सात पोटलियां रखी हैं। उन पोटलियों में पकाए हुए चावल और तरकारियां हैं। कल रात मैंने ईश्वर की पूजा की थी, ये उसी का प्रसाद है। तुम सब एक एक करके अपनी अपनी पोटली उठा लो।
1: जी चाचा जी।
0: बाहर एक गाय और एक कुत्ता भी बांधे हुए हैं, उन्हें साथ लेकर घर वापस जाना।
1: चाचा जी, इन पोटलियों को हम कब खोलें?
0: ध्यान से सुनो, रास्ते में जहाँ गाय पानी पीकर पेशाब करे और कुत्ता भौंकने लगे, हाँ, वहीं तुम सब अपनी अपनी पोटली खोलकर भोजन कर लेना।
1: जी चाचा जी।
0: जिसकी पोटली में मुर्गे का सिर निकलेगा वही तुम्हारे पिता का उत्तराधिकारी होगा और मकुई लोंगडी चरानम का राजा बनेगा।
1: चाचा जी, आपने जो जो आदेश हमें दिए हैं हम उसका पालन पूरी निष्ठा से करेंगे।
0: एक बात और, तुम सातों भाई इस बात को लेकर आपस में कभी झगड़ा मत करना।
1: जी नहीं करेंगे।
0: ये ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर ने ही मुझे ये संकेत दिया है। अब तुम सब अपने पिताजी के पास लौट जाओ और अपना कर्तव्य निभाओ।
1: जैसी आपकी आज्ञा चाचा जी। चाचा जी प्रणाम, हम सब चलते हैं।
2: कार, सातों भाई अपनी अपनी पोटली, गाय और कुत्ते को साथ लेकर वापस चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद गाय ने पानी पिया और वह पेशाब करने लगी। उसी समय कुत्ता भी जोर जोर से भौंकने लगा। तब सातों भाइयों ने अपनी अपनी पोटली खोलकर देखी। सबसे छोटे भाई की पोटली में मुर्गे का सिर निकला। बिना देर किए सातों भाई राजा मुइब के पास पहुंचे और चाचा चतियो की कही हुई सारी बात उन्हें बता दी। तब राजा मुइब ने अपने सबसे छोटे बेटे मंगलेम्ब को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और उसे राजगद्दी सौंप दी।
3: माँ, क्या मंगलेम्बा बड़ी रानी का बेटा था?
2: हाँ, मंगलेम्बा बड़ी रानी का बेटा था। इसी घटना के बाद से आज तक रोंगमई जनजाति में यह परंपरा प्रचलित है कि सबसे छोटा बेटा ही पिता का उत्तराधिकारी माना जाता है।
3: हाँ माँ, रोंगमई जाति की ये कहानी बहुत रोचक और मज़ेदार है।
2: बिल्कुल, तो आज के लिए कहानी यहीं समाप्त करते हैं। अगली छुट्टी के दिन में तुम्हें एक और सुंदर कहानी सुनाऊंगी।
3: जी माँ।

0: प्रश्न, रोंगमई जनजाति में कैसा रिवाज प्रचलित है? फिर से सुनिए, रोंगमई जनजाति में कैसा रिवाज प्रचलित है?
1: अचुंबा पाखुम पीबीरक पसिंगी मनुंग दगी लॉटरी तौरगा खनगत लबा महिरोई सिंगदा अहानबा मना ओइना लुपा चमंगा अनि सुबा अमसुंग अहुम सुबा तारबा सिंगदा लुपा चहुम अमसुंग लुपा चनी पिजगनी अदोंना पाखुम पीबीरक पदा इसागी मिंग क्लास अमसुंग स्कूल गी ममिंग बैंक अकाउंट डिटेल लोइनना डिस्ट्रिक्ट मरिक चुमने इबीरगा एसएमएस की खुथांगदा पिजरीबा नंबर 9378120495 ता पाखुम पीबीरो पाखुम पीबीरक मतम दा एपिसोड नंबर इबीरक कौबीगनो प्राइज विनर दी ngasidagi chaiol amagi matungda lawthok segani ngasigi di mata ngasida kainaya thangni jeri pinabirasi
2: tabire radio class chamari yankai humdoi subatangkakta class 6 ke hindi lesson 10 thauramasi department of education as समग्र शिक्षा मणिपुर की तेंबांगलोइनना संदोकचे बथौरमनी मथंग दताबी रसी सलाम सांदी रानी देवी नसकबा नबचंद्र तोंगब्रम नसैरिंगबा मतमिशयमा

0: Mohun Bagan Super Giant ka North Eastern United FC bu Panjal Mari Omda Thoikre Final Thaz ke Kulumde de Sanegani Pauloi Chare
1: Kam Samay Mein Zyada Munafa Bas Ek Click Mein Kamal Hai
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए सतर्क रहिए
4: आकाशवाणी इम्फाल हौजिक पुंफा मसीदा तुंगान तुंगान बा सैसक पसिंग दगी गीत लांथुक चरी

0: Hello.
1: Hello.
0: आकाशवाणी फाल्गुन गुड आफ्टरनून लेडीज त तरामुक चरी गुड आफ्टरनून मिंगलेफम ताकपियो कनाव बिरबनो
1: सर आई वांगो यंगजम काई इबेमसा थांगाव जों सर
0: इबेमसा थांगाव जों बु तरामनो चरी करिक्रम बवाफम ताकपी गनिङ सिदि
1: सर ना खै मी सथो कांद पेन मै मुथल इनर्जी
0: सेफ तोंनोबा
1: तंजाप तोजि हाइब कन्नव हाइब दु यामनु सुमे होजिके अखुजु वांगो जुइन मैजे
0: निमित खुदिंगी चंगद याद्रबा इनर्जी मखल क्यागि लक्त अखोइगी युमदे यौरक्लिबा इलेक्ट्रिसिटी पावर इनर्जी असिसु अखोइना हाइना सिंग सिजनाबा मसिद नतना अखोइदा फंगलिबे सिंग असिसु हाइना सिंग सिजनाबासी मथौक ताई लै हाइदुना अखोइना पक्षी सिजनबगी कैनोसे तौदबीदब तारे मधुमग्नी अखोना मैं पुनः खमीनब पादमजनी अतोब मफम दी करी करम ताकपी नुगे फोन तौरलगा मफम से थम्बीरप मतंग कना कई पुनः तामीनसी
1: थैंक यू
0: थागत्चरी.

0: हेलो
1: हेलो,
0: गुड आफ्टरनून लेडीज नी,
1: गुड आफ्टरनून,
0: गुड आफ्टरनून का नाम अभी रबनो
1: ओ आ इजे आ लमला के देगे मनुंग सर ने लाइबो कुद्रो मवांग लेकाय देगे ने सा
0: कुद्रो मवांग लेकाय देगे का नाम अभी रबनो
1: आ निंगोम बम थाना जाओ पी
0: निंगोम बम थाना जाओ पी
1: आ
0: ताकी यो
1: ती के प्रोग्राम सीधा मरी दै ना ना इना थुम वा फम के तंग फोंग रो के निंग भाई चले सा
0: हम ताक पियो
1: अकोई सुम नुपा सिं जे आयाम बना अकोई कनाबिदा नुपागा नुपीगा की थाबखे तोगा तोगा ना हल्ला मनकिने किने नुपागिनी अदुगा छिने नुपीगिनी हाइबम अदुम खाइदो पिरमबा
0: हम्म
1: अदुना क्वेना गसाकी लो थाबगवा ना थुरुगा हमिनारागा सु नुपा सिंगिने मको मको हमदो गइ नुते थोगा एता थोकीबा
0: हम्म
1: अदुगा नुपी सिंगिने युंगे आवा ना मको मताची लोयने पुहोगी थाबसे
0: हम्म
1: तुम नुपा सिंगजे खरा खाइदि नुपीगे आवाबद कितन खंबीरागा
0: Artificial intelligence na suk chaukhla matam sida cha sidi nupi khaktana thongdaubani haiba ofomasi yamnamak langani hujikti AI gi matamni aduna computer na phawba na traga robot na computer gi through the command piraga robot na chai sing thongba adegi why shit number robotic morph ka leiraba matam sida di akhoi punna thabak wana suminoroga hanjala matungda punna thabak se amaga amaga mateng pangnaduna wari watai sanaduna tominaraga di ngasi somna pukhat pirakliba wafumasi pukhat piramdabasu yai haba wafumaduni maramaduna thoromasi tabiri ba khwai punna makta nupanu pi khaktana yungi thabak ta thongaga puthoraga chaga duri bachaktu nupanu su nupina su anganga su ahana su punna chaga duri banina angam angamba mateng pangnaduna nongmagi chara punna semina basina khwai dige phaba nungai be imu ओयगनी हैव अ फोन मसी थमजेरी
1: अच्छा थाका चरी झार आइदे पुंसी जे आइ आहान बगा सिख कॉल फोन जे बने र थासी कि दब
0: याम नमक नुंगाई जे न्यारांग सु आहान ब फोन फंग ब मथंग मथंग फोन हु मरी दि आहान ब फंग ब सिंगना गुड आफ्टरनून ने दिस त फंग बंग सि सु लमलाई देगी सना जाउ बि हाइ बि बनी को सोम नंग आहान ब फोन फंग बि ब याम नमक नुंगाई जे तराम नुक चरी मसी ने खैने नुंगाई जरी ब हंजन हंजन ना फोन फंगबीब मरुप कयाम लेरगसु अनौब कयाम फोन फंगजिब सिंगनासु फोन ट्राई तोबिरगा फोन फंगबसे यामनमक नुंगाइजे मतुंगदसु ट्राई तोबिरो नुंगारा बवाफम क्या पुखत पिरो अदुदि करिक्रम बवाफम ताकपिखिनी
1: यागरे साल मथंगदा अमुक मथंगी प्रोग्राम दाई ट्राई अमुक तोबिरखिके सा
0: यामनमक नुंगाइजे तोबिरो मथंगदा कनानम करि हाबिरकपा पुनेतामिनेसी
1: थागत चरी
0: थागत चरी

0: हेलो
1: हेलो
0: मिंग लाइफ हाई बी द्रिंग आईदा रेडियो से ती हितंग लाभ थो गा लाभ पिनो भाई जरी यारे यारे मिंग लाइफ तक पियो क्वा के थेल दिगी थंबाल तराम नोक चरी इकोजी कितंग गदि चलिबो माले रेडियो दो गतांग मुथल गना हेन नुंगाय गदोनी वरी छानबसे नत्रगदि अखन हेक वरी छानबद को हंजन हंजन खोंजेल दो इको चत पाइज बता रे को याम नमक नुंगाय जे करी करम वफम तक पिगनी तक पियो ओ
1: सगो माय जे गतो बाइबे
0: तक पियो
1: जिंग मतम गी फिल्म दूसर बयान फिल्म नमको कई मचा इंखल नमीब मैमजे मेदीगुब खाऊगुब चलग कम नेसगुब ब्लाउसगुब दिग्ग तबद नाइजदब मैं
0: खाने कनागुब मई नत्र कनागुब संस्थान की वरीदी सानगुम सेन फिल्म है माइ माइ स्क्रिप की माइ कॉस्ट्यूम लेना मोगी मोगी सुम चाबू लेरमगनी सू अपो तापीरपनी नब अटोप पुनः खाब कनागुबद हे वही नुरीदबू रेडियो फनी फनी फनी फनी जीव कई मथे
1: कौजे
0: कईजे अखोना गुड आफ्टरनून लेडीज सानरीबसे इलेक्शन मैं नक्सलने रेडियो की इलेक्शन की।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो,
1: हेलो हेलो हेलो।
0: गुड आफ्टरनून लेडीज नी तराम नोक चेरी कनाओ विरबनो।
1: हाँ, आई की मिल राजकुमारी सना तुम दी तो
0: इमा सना तुम भी तराम
1: आई
0: नोक चेरी।
1: आई ना हाजो नहीं उनको दिने
0: ताक पियो इमा।
1: नपी अपोजी हज की लाइबे थरो मा सिदा ने अपोजी नपी सिंग गिन ने मा थौना मरिंग दे लाइन ना गांग इ छंग दे बमे याम जे असो कि मते नुवा जे यबा अदु वो आई ने सो हाजो नहीं बना अकोई ना कारिगुंबा इचा आमा नत्रक इशु मा छेम बमे तम दा नुपा गि थौदा गम टाउ न लै अदु ओय रक सु नपी ना क्वाई दे गि हे न मरु ओय अरि मरंग गि नो हाबे दा मामा हाय दे से मिन नेपोलियन जिला फना आरे मिन न जिमनी ए गुड मदर हाय दम ब्रो
0: याम नमक चुमी एंगोंदे इमाम पियु पृथ्वी जोय तोगे हायदन हायरम इबनी इपा पियु दे हायरम दे
1: अदु माने हाय बिरा मेबा अदन अकोइ न मसि जि थौरम थि दै जा बखान मथेन मया मम फोंदो पिर ख हाय बिरा ख से आइ दि या सुकि मति नोङा जारे सिदां हाय जारे ग थाम जारे गे
0: सिन दुम पेन बिरा द्रो इमा
1: दिसलो बुदि पे दे आदेशु मया मम सु फोन तोंनि ब हानि मया मम लाय रंगनि आइना सुंकुइ न सांग नङा ग लाय रे दि मि सिंग दि दै दै आतो प मि दे सु कितां कितां मि नि थर ग पिबि बने प ब्रांक
0: जा याम नम याम नम फजब वा कलो नि मान थम बिरि बाय सि याम नम नुवा जे मथंग दमु कना न करी हाय बिरक पा पुन नम दुम तामिना किसी
1: हां तामिना रसे
0: थागे चली।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: गुड आफ्टरनून लेडीज नी कनाओ बिरबनो।
1: हेलो, गुड आफ्टरनून सर।
0: गुड आफ्टरनून लेडीज नी कनाओ बिरबनो मिंगले फम तक पियो।

नमस्कार कर्मचारी, मैं निंदा खोंगजम रंजना आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रसारित संगाई चैनल में।

दोस्तों आज गीतमाला में आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत और आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे ऐसे गीत जो मन को सुकून देने वाले होंगे, जो इस तपती और जलती गर्मी में ठंड का एहसास कराने वाले होंगे। तो सुना जाए पहला गीत फिल्म गुड न्यूज से रोचक कोहली और आकांक्षा सिंह और लव की आवाज़ों में।

देर के लिए सही इन गीतों को महसूस करें और खो जाइए इन गीतों में। अगला गीत आप सुनेंगे हाईवे फिल्म से AR रहमान की आवाज़ में, इरशाद कामिल का लिखा हुआ और AR रहमान का संगीत।

पेश है अगला गीत अमिताभ भट्टाचार्य की शब्द रचना में और अमित त्रिवेदी के संगीत में फिल्म लुटेरा से, शिल्पा राव, अमिताभ भट्टाचार्य और अमित त्रिवेदी के स्वर में।

फिल्म लुटेरा का गीत सुनने के बाद अगला फिल्म है गोल से यासर देसाई की आवाज़ में, गीत और संगीत आरको द्वारा।

दोस्तों दिन ब दिन गर्मी बढ़ती जी जा रही है, इसलिए गाने भी सुने और साथ ही पर्याप्त मात्रा में पानी या पेय पदार्थ का सेवन भी करते रहें, क्योंकि दोस्तों आपका स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके धड़कने से ही, आपके दिल के धड़कने से ही हमारा जो कार्यक्रम है वो भी धड़कता है। आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म धड़क से, अजय गोगावाले की आवाज़ में। अमिताभ भट्टाचार्य की शब्द रचना है और अजय अतुल का संगीत।

कार्यक्रम का आखिरी गीत आप सुनेंगे फिल्म जलेबी से श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाजों में। प्रशांत इंगोले कुणाल वर्मा की शब्द रचना को संगीत दिया जावेद मोहसिन ने।

मकल मैथिल की थोरुम क्या संदोक तो तहन जरीबा सी मैं गहर शाम अहुम दसमिक मंगा द संदोक चरीबा आकाशवाणी इम्फाल की FM संगाई चैनल दिगिनी ngasi august kun mathu yesi world senior citizens day haiduna malem pumna palin tongnari khoi pumna makna ikogi chahi yamla ba imai passing imai pa bu pokpa ipu ipoxing bu luna chana tomina si haiba ba phoma sigal na na pungko masida puduna lakchiri tongan tongan ba seksak pa singdigi manipuri filmi sei khudol ge han madata mina si english sing ani tare tu putoki ba romi meitegi direction makha da putoki ba film akun mani फिल्म अच्छी तोम थाजम की खोजल रोमी मैतना सैरें बनी तोम थाजम मसा मकना सैरांग भी सैनी इसे खुदोल तमजरी तामीनसी

0: Neha Yenkok Pom Haina Lady Vai, the Shidi Kanbirakpa, Isayesi, Tanjaki Vigulunana, Tankagasida Akaswani Falgi, YouTube live streaming, live set Kikotangda, Tavining by Say Kanbirakpa, Sandokpa, Lushinjari. Makalmatiliki Torumkia, Sandokta Tanjari Versi, Akaswani Falgi, FM Sangai, General Digini.
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा बस एक क्लिक में कमाल है
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए सतर्क रहिए

0: नहीं बेटा, उठो बेटा, थोड़ा जल्दी उठा करो।
1: मैं भी जल्दी उठना चाहता हूँ, लेकिन आँख ही नहीं खुलती।
0: तुम्हारे भाई तो सुबह ही सैर के लिए निकल गए हैं, तुम्हारे पापा भी कब के निकल चुके, और आते समय तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाएंगे। मैं दूध गर्म कर लेती हूँ, जल्दी से हाथ मुंह धो लो।

0: अरे टोनी की माँ, सुन रही हो?
1: जी आई।
0: क्या टोनी अभी तक नहीं उठा?
1: हाँ उठ तो गया है, हाथ मुंह धो रहा है शायद। मैं बुलाती हूँ उसे। टोनी, टोनी बेटा, आंगन में आओ, आओ, आ जाओ। पापा तुम्हारे लिए मिठाई लाए हैं। चलो दूध के साथ खा लो इसे।
2: पापा?
0: हाँ
2: भैया, अभी तक नहीं लौटे?
0: नहीं, वे अभी नहीं लौटेंगे। हमारे मोहल्ले और आगे वाले मोहल्ले के युवकों के साथ हॉकी का मैच खेलेंगे।
2: अच्छा,
0: इसलिए वह तैयारी कर रहे हैं।
2: कहाँ पापा?
0: हमारे आगे के एक छोटा सा बाजार है ना?
2: हाँ,
0: उसके बगल वाले मैदान में।
2: पापा मैं भी देखना चाहता हूँ।
0: इस बार तो ज्यादा मजा नहीं आएगा, फाइनल प्रतियोगिता में पापा के साथ चलकर देखना, ठीक है?
2: ठीक है पापा, पर आज तो हॉकी की कहानियाँ सुनाइए।
1: हाँ बेटा, पापा से हॉकी की कहानी सुनो, मैं घर के कुछ काम खत्म कर लेती हूँ।
2: जी माँ।
0: आज तो छुट्टी है, तो उत्ती असंग पका लेना मिर्चदार चटनी के साथ। अभी से मुंह में पानी आ गया।
1: जी पका लूंगी।
0: टोनी बेटा।
2: जी पापा।
0: क्या तुम भी हॉकी खेलना चाहते हो?
2: हाँ, लेकिन मुझे खेलना नहीं आता, मैं बड़ा होकर खेलूंगा। आप बताइए पापा।
0: टोनी बेटा ध्यान से सुनो, हॉकी विश्व के प्रमुख खेलों में से एक है। हॉकी शब्द फ्रेंच भाषा के बहुत पुराने शब्द हॉकेट से बना है।
2: अच्छा।
0: हाँ, इसके अर्थ होता है गरेरिया द्वारा हाथ में लकड़ी पकड़ना।
2: पापा, हॉकी के मैदान की लंबाई और चौड़ाई कितना है?
0: हॉकी के मैदान की लंबाई 91.40 मीटर है और चौड़ाई 52.24 मीटर होता है। यहाँ मैदान चारों ओर सफेद रंग की रेखा से घिरा होता है।
2: पिछले साल जब मैंने एक मैच देखा तो मैदान में मैंने 4 झंडे भी देखे थे।
0: हाँ हाँ, मैदान के चारों कोनों पर 4 फुट ऊंचे 4 झंडे लगे होते हैं। हॉकी स्टिक का निचला हिस्सा बाई तरफ मुरा होता है।
2: हॉकी की स्टिक का वजन कितना होता है पापा?
0: हॉकी स्टिक का वजन 794 ग्राम होता है।
2: मैं तो उसे पकड़कर ज्यादा देर तक नहीं खेल पाऊंगा।
0: अरे तुम्हारे लिए तो बाजार से छोटी स्टिक खरीदेंगे।
2: हाँ पापा जरूर खरीदिएगा, मैं रोज अपने आंगन में खेलूंगा।
0: जरूर खरीदूंगा अपने बेटे के लिए।
2: पापा एक दल में कितने खिलाड़ी होते हैं?
0: टोनी ध्यान से सुनो, एक दल में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। खेल के दौरान दल के खिलाड़ियों को बदला भी जा सकता है।
2: अच्छा,
0: किंतु वह निलंबित खिलाड़ी के स्थान पर दूसरा खिलाड़ी शामिल नहीं किया जा सकता।
2: पापा वे लोग कैसे पोशाक पहनते हैं?
0: जरूर, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा।

0: दोनों दलों की पोशाक अलग अलग रंग के होते हैं बेटा। एक दल के 11 खिलाड़ी एक ही रंग के पोशाक पहनते हैं और दूसरे दल के खिलाड़ी अलग रंग की पोशाक पहनते हैं ताकि खेल के दौरान आसानी से पहचाना जा सके कि कौन सा खिलाड़ी किस दल का है।
1: पापा, उन लोगों के जूते हमारे जैसे नहीं होते क्या?
0: नहीं बेटा, वे लोग अलग प्रकार के जूते पहनते हैं।
1: अच्छा,
0: और हाँ, इस खेल का समय 90 मिनट है।
1: ओह,
0: इस खेल के लिए हर खिलाड़ी का तेज धावक और कुशल होना बहुत जरूरी है।
1: पापा, मैंने देखा है गोलकीपर हमेशा ये कोशिश करता है कि दूसरे दल के गेंद को गोल पोस्ट के अंदर ना जाने दे।
0: बिल्कुल सही, एक अच्छा गोलकीपर हमेशा गेंद को गोल पोस्ट में जाने से रोकता है। खेल के बीच 5 मिनट का अंतराल रखा जाता है। अंतराल के बाद दोनों दल अपनी अपनी दिशा बदल लेते हैं।
1: पापा, हमारे छोटे बाजार के पास वाले मैदान में तो बहुत कीचड़ है, कहीं वे लोग गिर न जाए।
0: हाँ, कभी कभी गिर भी जाते हैं, कई खिलाड़ियों का हाथ पैर भी टूट जाते हैं। लेकिन बेटा, आजकल तो हॉकी कृत्रिम घास यानी एस्ट्रोटर्फ के मैदान में खेला जाता है। मणिपुर में भी हॉकी से मिलता जुलता एक पारंपरिक खेल खेला जाता है। इसमें स्टिक बांस की बनी होती है और गेंद बांस की जर से बनाई जाती है। इस खेल को कांगजे के नाम से जाना जाता है।
1: पापा, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। आपने बताया था कि सीमा रेखा के लिए सफेद रंग की रेखा खींची जाती है।
0: हाँ,
1: वो किस लिए होती है पापा?
0: हाँ बेटा, बताता हूँ। हॉकी के मैदान पर सफेद रेखाएं खेल की सीमा तय करने और नियमों को लागू करने के लिए खींची जाती हैं। यहाँ रेखा मैच को निष्पक्ष बनाने और रेफरी को सही निर्णय लेने में मदद करती है।
1: अच्छा?
0: हाँ, और हॉकी की गेंद का रंग भी सफेद होता है। सुनो, अरे तोनी की माँ।
2: जी आई।
0: जरा एक ग्लास गुनगुना पानी लाना, गला सूख गया है।
2: हाँ हाँ, ला दी हूँ।
3: ये लीजिए आपका पानी। टोनी बेटा, भूख लग गई है क्या? अगर बाप बेटे की कहानी खत्म हो गई हो तो मैं खाना लगा दूं।
0: टोनी बेटा।
1: जी पापा।
0: आज तो मैं तुम्हारी माँ के बनाए हुई उती असंगबा भरपेट खाऊंगा।
1: माँ, मुझे तो उती पसंद नहीं है, मेरे लिए और क्या बनाया है?
3: इसलिए तुम्हारे लिए सौगड़ी बनाई है, बादाम और बैंगन का एक कांगो भी बनाया है।
1: फिर तो मजा आ जाएगा।
3: हाँ, तो मैं उसके लिए अच्छा खाना क्यों ना बनाऊं?
0: कौन है? अरे मेरा बेटा याइपव है। हेलो बेटा, क्या हुआ? तुम लोग प्रधान जी के घर खाना खाओगे? हाँ, तुम्हारी माँ भी यही है। ओहो, तुम 11 लोगों के जूते और कपड़े प्रधान जी दिलवा रहे हैं? तुम्हें किसने चुना? अच्छा अच्छा, ठीक है, रखता हूँ। ओके।
3: वैसे वो क्या कह रहा था टोनी के पापा?
0: तुम्हारा बेटा प्रधान जी के घर खाना खाकर आएंगे। उसके जूते और कपड़े भी प्रधान जी दिलवा रहे हैं। और एक अच्छी खबर यह है कि उसे गोलकीपर चुना गया है।
3: ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन ये खेल कहीं उसकी आगे की पढ़ाई में बाधा न बन जाए।
0: नहीं नहीं, तुम्हारा बेटा बीए कर चुका है, अब उसके एमए की एडमिशन की बात चल रही है।
3: हाँ, वो तो ठीक है। चलिए अब खाना खा लेते हैं।
1: नहीं माँ, थोड़ी

0: ये रुक जाइए, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है।
1: हाँ ठीक है, फिर मैं घर के कुछ काम ही निपटा लेती हूँ।
0: जी माँ, पापा आगे बताइए।
2: अब मणिपुर के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। मणिपुर के हॉकी खिलाड़ियों में थोइबा, नीलकमल और तिकेन आदि के नाम उल्लेखनीय है।
0: पापा, मणिपुर के हॉकी खिलाड़ियों ने हमारे देश का नाम रोशन कर दिया है।
2: हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। आज भी उन लोगों के नाम हर मणिपुरियों के दिल में बसे हुए हैं।
0: पापा, क्या मणिपुर में महिला हॉकी खिलाड़ी भी हैं?
2: क्यों नहीं, मणिपुर के महिला हॉकी खिलाड़ियों का साहस और प्रतिभा विश्व भर में प्रसिद्ध है।
0: अच्छा,
2: सन 2003 में कुमारी सुजलता को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा ओलंपियन संगाई इबेमल और भारतीय महिला टीम के पूर्व कप्तान सुशीला चनु का नाम भी उल्लेखनीय है। बेटा, आज के लिए इतना ही। मैं नहा कर आता हूँ, फिर हम सब साथ में खाना खाएंगे।
0: जी पापा।

0: ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯏꯁ ꯁꯃꯒ꯭ꯔ ꯁꯤꯛꯁꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯕꯅꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯏꯁꯀꯤ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯁꯨ ꯇꯥꯕ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯁꯤꯛꯁꯀꯤ ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛꯀꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯍꯪꯖꯔꯤ
1: आज का प्रश्न है मणिपुर में हॉकी जैसे पारंपरिक खेल को पुराने समय में क्या कहते थे फिर से सुनिए मणिपुर में हॉकी जैसे पारंपरिक खेल को पुराने समय में क्या कहते थे
0: अचुंब पाखुम पीबीरक्पसिंग की मनुंग दगी लॉटरी तौरगा खनगतलब महिरोई सिंगदा अहान बमना ओइना लुपा चमंगा अनीशुब अमसुंग अहुमसुब तारबसिंगदा लुपा चहुम अमसुंग लुपा चनी पीजगनी अदोंना पाखुम पीबीरक्पदा इसागी मिंग क्लास अमसुंग स्कूल की ममिंग बैंक अकाउंट डिटेल लोइनना डिस्ट्रिक्ट मरिकचुमने इबीरगा एसएमएस की खुथांगदा पीजरीब नंबर 9378120495 ता पाखुम पीबीरक्पु पाखुम पीबीरक्प मतम्दा एपिसोड नंबर इबीरक्प काउबीगनु प्राइज विनर दी नसिदगी चैवल अमगी मतुंगदा लाउथोक्सगनी नसिगिदी मता नसिदा कायनेया थंगनिजरी पिनबिरसी
2: ताविरी रेडियो क्लास की चमरी यांखे मरी शुभतांकक्ता क्लास 6 की हिंदी लेसन नंबर 9 होकी तोरमसी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एस समग्र शिक्षा मणिपुर की तेमांग लोना संदोक्चब थौरमनी हुजी मुक्तामी हामोम सदानंद की खोंजल नरेंद्र निगोंबन सैरेंब मतमी इसई की सैहना फोंदोक्तन थम्बा नुशीबसू

0: हे पलेम पोक्नफम नचासिंग न सरी वासक चरी थवाई से था बतार बसु नंगिनिंग तम फिराल बुदि नोमदोल खेत न पाइहनगनी नंगि लेंगाक लिकलम बुदि इकोक थोंग न हिकटोक पतौद न ngakchagani इरैचा इरोय इनाउ सिंग न अकी अखंग याउदना मनिंग तम न हिंजबना पुंसिगि मिकुप खुदिंगी लाइसोननी थादोक पयाद्रबा इथौदांगनी इनथोक पयाद्रबा इसागि पुंसी कानबा नुंगाइबा तोंगजब पुमनमक अरेमबनी तुंगोइ नन थमलमलबनी
1: पलेमु नुंगसिबि पलेमु अपोपि नहाकि ngamkhaibu ngakchaba nanggi izat pukkanjaba natambakki napari namom singna ingna chikna leitana maningtam na hingjabana punshigi mikup khudingi amatta ngairaba pandamne he palem apopi nasa singna sari wasakchari thawai she thabatarabasu nanggi ningtam phiral budi nongmadon khetna paihengani नंगि लैंगाक लिकलम बुदि इकोक थोंग नंगाक चगनी हितोक पतौदना नाक चगनी।

0: ताबिरी वर्सी आकाशवाणी इम्फाल की एफएम संगाई चैनल नी होजिक मखाता रखप नुवाई नुवाई रब थरुम क्या लांथोक पिनब खुनराकपम आदित्य द खुदसिन नजरी
1: थागचरी होइनिंग सुंगबम देवदत्ता मेगाहर साम ओम दासमिक मंगा द संदोक चरीबा आकाशवाणी इम्फाल की एफएम संगाई चैनल की थरुम ताबिरम लिब पुमनमकपो अमुकाना तराम न ओकचरी न लुकचरी आकाशवाणी इम्फाल होजिक ताबिरी बसिंगी मफम द अमुक लांथोक चरी ngai kho ta khisi

0: तेन त्रकुमार एक का कनान है मदो नते कनान करी है जलगी नमो कनान करी है जलगी कनान तमी नो
1: गरांग दे चंगलक प बिरेना सिथी होइने ईरगा आइ मोरे थल मने कुमा
2: बिरेना कई नु बिरेले सितो माना आमनी बुतो दु दिली योरे बिने मजी कट नाबो
1: कुमार
2: बिरे नार कटन से लंगड़ी लंगड़ी बन लग रही है ना गाँव में
1: नती कुमार नंगा इगों तो मीना मंगा करो कुमार नंगी बाई थोड़े तारे में मीठा ही सब सारा खांगे कुमार हायो नंगा इगों तो मीना मंगा के बकर हीरो कुमार हायो कुमार अकुल की तमोशो
2: भाई तमोशो ले गिरा बु दबो तो पाव कमरे तो बकर ही लेके भाई तमोशो कैसी तोड़े भाई
1: अशुमरी को कुमार
2: अशुमरी भाई अरो ऐ जोय पुरसल बने अदो तमोया गाय ते मगन नंगिन नाक सम दिया दे तमोशो छु अदो नंगिन नाक सम दिया दे नै नंगिन नाक तलाई नि
1: तो कोई तमोशो इति मगत याय गेला
2: ओ से ओ
1: से अदो नंगि बिरे रे बंगा ओरो मसे इति टोके
2: से ओ से अ अ इति मने ना अरे गिदि तमोया ने से नंगि ने बिरे नि से
1: अकु दिया दा
2: ते याने नंगि लुपा सोंगा लो न पिरम मसे पिरम दिया दे मसे तो नोर नंग लो न सिनम को नि सिनर मिनि
1: ला कै रो छु अकु ते याने लुपा सोंगा कमाई तो बिरे नो
2: हे दयाई थबक तोरे ने भाई
1: ओइले नहस
2: कुमा अचे गोरमेन एम्प्लॉई वेरे बा
1: ओइले आइबो
2: ओइले न थबक तो मा गि हान म तोलो भंगो पैसा दुनी लुपा सङा जिन गोन पिरम दया गिन पिरम
1: आइने इ तम इ न कलम वा कल गो अंदरम लबा नसिरी आइ जे तया गोबिल सर्विस मंगा बा अदुरदी कुमार अखोइ ते आइने गोन पिगि बसि लुपा सङा ग अनि सुरे कुमार लुपा अनि से आइ तया मोनि खंग नसि पाव बदा आइ चेक्सेल न आइ गि फ्री खाउ र थमि बसि हो आइ जे तया थबक तो
2: तया गि नुमायो पाव तारे नंग देने पाव दानि रब्रो
1: इथि मगे
2: से देने नंग गिने ने इरक पसिथि
1: इथि मगे तो सिथि
2: ओ सिथि
1: अतु सिहना पिर गाद्रो
3: इथि मगे बुंगो तो दोंबा नंग गिने आंबा निगा इथि मगे ने इनाउ इंजीनियर पास तरो को थोरक पदो ngairung ga dori pene ne amba gi ningba thungdi ba phau ba manipur a tholke khan gen लाइक कने पा नौसिन नगन कोई ते मगी बुंगो नंगी नेया मयाई म सरकार की थबक तौरे निशा पुम नमक खादो खरे नंगी मरु कुमार बु नंगी ता मोसा गता नरगा नंगी ननाक थाखि बने नंगी हाइनिंग बपुम नमक नंगी मरु कुमार गे मफम द लोइन ब खाइर ओ असि गि दिन बतांग स दलुर गे ना कि नमा सख लेबि नते मा दाता
1: कुमार अखोई ती मसे ऐगिदी हेक हेक पुपी इमा मंगनी कुमार
2: अदो इताई मगी पाव सुतारे ऐगी नुंगाय पाव सुनंग तानिंग द्रबरो
1: तबु तासि कुमार हाय होलंग करी पाव नो
2: अदो ऐदी मसिदे के एक ठोक खिबगा गवर्नमेंट एम्प्लॉई होबे सोइना नंगो नगे हालनी
1: अदो बुदिना मे सोइदना हालत
2: अदो सिदे एक ठोक खिबा ऐ लुम दोरे भाई
1: ओइ रे
2: असे मुनी भाई अलो मन एंगेज तो मसक पजर उडी भाई
1: ए अदो ममिंग करी कवी कैलम दे एंगो तो हायुदना
2: अदो नंगा जे पिसक पिंगे रेतिन रे कुनी को
1: कोई ने दुकै दरोगे
2: साक सालो न जामिन रे को भाई
1: माने
2: अदो
1: हरो बा
2: नन नु मता नंगि सीडी आई दुनिया दाने न फुंदो खबे एई नाक तलेते अदो नंगि दोन हायरो नंगि नंगि दु सिबे माते में करी कौ
1: ए मी थमोई दे पूजा तो लात थमी दे बु नंगो रे तराई दे राय ने हे त हाय दो पया बरे
2: अदो
1: नंगि दोन हायरो कांदे
2: नंग नंगि थमोई दे लात ने थमगु मई सई थमोई दे लात थमी नंग दान हायरो भाई
1: भाई दे नंगि दोन हारो
2: नंगि दोन हायरो बा
1: उ तो हायरो भी कई दुरगी मसे माई मारी जे तो तोरी करू
2: माने नंग दे तोई दे नंगि दोन हायरो
1: फरे से सिवा से तो से नुंगाय बवारीम सासिलो से गाता फमलो
2: गखुने नुंगाय पावा मदु लाईरी ने
1: कई नुंगाय पाव
2: तमगी नुंगाय पाव मलेरी ने
1: ओकी तब सो गया
2: तम सो नुंगाय
1: तो नंग से हार तमिया तो
2: जे तमसो नंग गिदा मुते सेने रे पिरक खोंगलाउ नै सेबाय
1: ओकी तमसो ना
2: ओ अजरा यो
1: ए ए मसिदी एनी याम पाम मसिदु ने उन मसु के खोंगाउ दुने आ ए सिबु ओकी तमसो ना एई ना खसे तमनर तोरे खोंगाउ के पिरक तरे तोरी सिबु ए मान बी नंगी बीरी नाइस ना एकुई तमसो सीरी का हाइजिल सुमा तुम मुंगा ओबरबा माइसु सारा के मागी मोई मनाव पर सीरी नो का हाइजिल के एकुई तमसो न खोंगाउ के पिरक तना तम खोंगाउ से सागु दिगे कुमा और से सिंग यंग को कुमा

0: नंग अच्छी दी मेरे बाग दी
1: माने ऐ इंजीनियर पास रो थोड़ा निकल दूर के लाओ सिस्टर्स लाओ लाओ पायर की चिंदी यार अरे स्वाइन तो सिस्टर इबान कांदे से ठीक रहने ओक्टोरी शो मोवार का को या मान भी टाइप ते है तक कार्सिकर चलो चल लाओ सुना मैं सुना मैं भी नंग नंग अच्छी नंग अच्छी ये मांग दे उल्लू बच्चे तम बच्चे ताक पड़े नाक हतोपा यू नाक्षा गई है मगी महुगे ऐसे नेत्रा परे परे मशी नंग ये लाय बुक्ते तम लम्बे तुम दलाक के दबे पुंछी गु मांग जो उन्हें नखंग बंग बकना याव कर बगे सरामान दे ऐसा देखे अतु कुछ ना मान भी ये वो ऐ ने नंगी तो मगता ले रखी पा खुद और शिमत तंग दी मंग लोकशिल फुक मीना का नवंग मंग निखन ना से नंगी सारी नी से सी लोकशिल से
0: अरे तामो तामो की वाकल ना तो याऊ रोबती ऐसू नशी देगी पोमी ना भाई भूख मांगने खा लगा लक्षण देने के को तामु
2: रे क्या है बाप क आई ये आ यूं तो मुझे लो रे ना वो तो तुम्हें से लेने ना पापुंग नुहारे तो वो तो पाकिंग देते हैं आये क क तो
1: कुमार ना कुमार सामना
2: है तुम लोग ना है ना क्या हो चुका है
1: कुमार
2: आई ना उसी थोड़ी ना
1: उसी तो
2: थोड़ी आई कुछ अंदर मि� ऐ मरु अम्मा आधा मेरे बाप ता इंजीनियर ता मस्त किया था सीने से से भाई सीने यहाँ तक हल्ला मने एंगेज तो मरा का मेरे साथ बनु पी दो से
1: ओ ओ मिंग मिंग करी
2: छाना मंदी
1: ओ अरे दी अखोई मरु कुमार की लाइबक भाभी है विदु ओयर बनी ना अखोई की दी
2: इज़न दारे भाई
1: इज़न दारे अरे वो कुमार नंगी लोहोंग बने बित्तशु नंगी नुगाई ऐप बने मित्तुसु ऐ मित्सना पेने यंग वफ़ंगाऊ दे अदोंगा सिरी मतांग सारी गई सिदा खुदोल पोलम तंग तमलम गे हाई बबू
2: याई ने कछुगाई दे भाई नंगी नसन नीने कछुगाई दे भाई
1: ऐ की हक्षांग द सागो नरी बहाई बबू शुभ नगी खुदो पशी मांगाया

0: हामोम नबगी खोंजेलदा राजेंद्र अक्रमना सैरेंबा मतमिसे मताबिरे थोरम संदोक्तुना ताहनजरीबा असि आगास बानी फालगी एफएम संगाई चैनलगी नुमिदांगी थोरम परेंगने हौजिक पुंगफम सिदा अमुक ताबिरसि चयोलगी मपाउ पुबा थोरम चयोल सिदा थोरम लानथुकपिगदबा तंफामनी लुक्राम
1: लैबाक किदमक मरमदम पोकनफम किदमक पामुदना कीबलेटना थवाइन पोंथा ओइख्रबा अथौब कयाबु निसिंग जेबा थाबुमनी ऑगस्ट था असिगुमलाबा अथौब सिंगबु निसिंग बना नसिगि मिरोल सिंगदसु पीरी मरिबाक मजाति मरमदम पोकनफम बुनु सिबगी इथिल कया कया मालेमदनु मिताबलेति हाइनरिबा ब्रिटिश साम्राज्यगि मायोक्ता माइथिदनि खंगन खंगन थौना हनबलेतेना लांथिंनखिबा अदुगुमलाबा इपाई पुसिंग अदुगि मसा मसुसिंनि खल्लुबदा एखोइसु चावथोकसेब पोगली अदुगुमलाबा इपाई पुसिंग अदुगि वाखलोन खजिक तुंगिनजा इदैबा पुनुसिबगि वाखलोन एखोइ खुदिंदला हेलसि हाइबा वाफमसिगलोनिना ngasisu pujarakli akashbani imphalgi sangai channelgi sayulgi mapau pubathauram sayul sida punamakpu khurumjari iramdamasigi khulai basingi wari mayamna dumak taduna lakli naha oiriba wairok cheri makungana lamjing duna wairok studio mingthon duna tongan tongan ba potrigi polam sing puthopgi matangda wari watai haying thang jinumit

नमाज से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

एक मेगा हर्ट्ज पर ये प्यारा सुरमई सलाम आप तक पहुंचता है. कहते हैं प्यार भी तू, दोस्त भी तू, एक भी तू, हजार भी तू, गुस्सा भी तू, माफी भी तू, मेरे इस जिंदगी के सफर में काफी है तू. बस कुछ ऐसे ही हर श्रृंगार का सदाबहार अंदाज जीवन के सफर को सुरमई बनाने में काफी है. आइए अगला गीत सुनते हैं साथी फिल्म से. सुमन कल्याणपुर और मुकेश जी की आवाज में इस गीत को रचा है मजरू सुल्तानपुरी साहब ने और संगीत से सजाया है नौशाद जी ने. तो आइए सुनते हैं.

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से,

कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

मेगाहर्ट्ज पर दोस्तों आप सुन रहे हैं हर सिंगार और कहते हैं कि समय के साथ साथ जब संगीत गीत का अंदाज बदलता है तो कई बार दिलों को छू जाता है। 90 के दशक का ये अंदाज वाकई में हमारे दिलों को छूता है। समीर साहब का लिखा ये गीत अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति जी की आवाज में। इस गीत को संगीत से सजाया था जतिन ललित जी ने। दोस्तों वास्तव फिल्म का ये गीत बड़ा ही प्यारा तो है ही, साथ ही मेरे अंदाज से शायद आपके दिल को भी छू गया होगा। कहते हैं आंखों से लिखी दास्तानें यूं तो बड़ी गहरी होती हैं और बहुत कुछ कहती हैं। वो कहते हैं ना, दुआओं में असर बाकी ना आहों में असर बाकी, है कुछ ले दे के घर बाकी तो एक चश्मे तर बाकी। ये भीगी पलकों की दास्तानें बड़ी गहरी होती हैं दोस्त, इन्हें समझने के लिए दिल और दिमाग दोनों की जरूरत होती है। आइए सुनते हैं अखियों पर गुनगुनाई ये दास्तान, जो कि है आपकी कसम फिल्म से किशोर जी और लता जी की आवाज में। इस गीत को अल्फाज दिए हैं आनंद बख्शी जी ने और संगीत से सजाया है आजी बामन जी ने।

101.1 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं आप सुन रहे हैं हर सिंगार और बड़ा ही प्यारा ये अखियों का अंदाज जो भी आपने सुना। तो ये श्रोताओं हर सिंगार को समेटने की आपसे यहीं पर लूंगी इजाजत, क्योंकि समय और जो घड़ी हमें इशारा कर रही है ना कि आज के हर सिंगार को समेटूं यहीं, तो आपसे इसकी लेती हूं इजाजत। लेकिन आपको बता दूं कि 11 बजे आप सुन सकेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर समय रहेगा अंग्रेजी में समाचारों का। 11:10 पर सुनना ना भूले मार्केट मंत्रा का रिपीट ब्रॉडकास्ट। और जी हाँ, आपको बता दूं 11:40 पर गीत मेरे मन में लेकर आपके साथ एक बार फिर से जुड़ूंगी आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं आप सुन रहे हैं दिल के बेहद करीब वो सदाबहार गीत जिन्हें लेकर आए हैं हम आज हर सिंगार में। सुनते रहिए और बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली केंद्र के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। यह अगला गीत जो आप तक पहुंच रहा है, आपको बता दूं आरजू फिल्म से ये गीत अभी आप सुनेंगे और साथ ही आपको बताना चाहूंगी कि इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी साहब ने और संगीत दिया है शंकर जयकिशन जी ने, आवाज लता जी की मखमली प्यारी आवाज। तो आइए सुनते हैं ये गीत आकाशवाणी दिल्ली केंद्र पर 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया में विकास और संसाधनों को लेकर कई चिंताओं के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विकास के उज्जवल उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है। नई दिल्ली में आज शाम इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड्स लीडर फोरम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत विकास की गति बनाए रखने के लिए लगातार कई कदम उठा रहा है और सुधारों के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों की नीति लोगों को अभाव में रखने की थी, ताकि वे बुनियादी जरूरतों के लिए भी सरकार के सामने हाथ फैलाने को मजबूर रहें। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार केवल नियमों में बदलाव नहीं कर रही, बल्कि नियमों से जुड़ी पूरी नीति में बदलाव ला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाला नशा मुक्ति केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। श्री शाह ने कहा कि भाजपा के लिए

0: देश, राज्य और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता।
0: श्री शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के बारे में कहा कि पुराने दंड कानूनों को समाप्त कर नई भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है जो प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और समय सीमा पर आधारित है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, हालांकि इसका उत्पादन अनुमान से कम रहने की संभावना है। सरकार ने चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को देखते हुए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतें स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि वह स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल से जोड़ना सही नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले महीने की 5 तारीख को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की चयन प्रक्रिया के जरिए किया गया है। पुरस्कार के लिए चुने गए 48 शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से हैं। इनमें 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षक शामिल हैं। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की तेसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यी फैन और झांग शू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi has said India is being seen as a bright spot of growth throughout the globe, even as the world has many concerns regarding growth and resources are getting weaponized. Addressing the Economic Times World Leaders Forum in New Delhi this evening, the Prime Minister said India continues to take several steps to ensure continued growth momentum and reforms are commitment of his government.
3: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा, लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
2: The Prime Minister said India has moved away from production-linked punishment model during earlier governments to production-linked incentives now. He alleged it was policy of earlier regimes to keep people in scarcity so that they beg before the government for even basic needs. Mr. Modi said license raj of earlier governments was used to increase unemployment while his government's production-linked incentive model creating opportunities. Talking about the seven powers representing seven key streams which he spoke about from the Red Fort, the Prime Minister highlighted that seven such sectors include manufacturing power, agriculture and food processing, technology and innovation, and the green and blue economies on which India is placing immense focus. He said India is currently undertaking next generation reforms at the policy level to secure future and the government is implementing reforms in governance and ease of living. He said reform is not a compulsion as it is government's commitment and conviction. The Prime Minister highlighted that the rapid development and swift reforms taking place in India today because there is political stability and continuity in the government's

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्रा कार्यक्रम में आज के कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ एके भट्टाचार्य। एके भी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।
1: और सबसे पहले मुख्य समाचार।
0: Benchmark domestic stock market indices end on a flat note. Sensex settles at 77,541. Nifty adds 20 points. India's foreign exchange reserves rise by $9.9 billion in the week ending August 14. And global crude oil prices rise.
1: घरेलू शेयर बाजार सूचकांक आज लगभग सपाट बंद हुए। सेंसेक्स 77,541 पर पहुंचा, जबकि निफ्टी में 20 अंक की तेजी आई। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 14 अगस्त को समाप्त हुए सप्ताह में 9.90 अरब अमेरिकी डॉलर बढ़ा और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल।

0: और बढ़ते हैं अब खबरों की तरफ। देश के प्रमुख घरेलू शेयर बाजार सूचकांक आज लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में मामूली बढ़त दर्ज करते हुए लगभग सपाट बंद हुए। सेंसेक्स 3 अंक की बढ़त के साथ 77,541 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 20 अंक की तेजी दर्ज करता हुआ 24,252 पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में मिड कैप सूचकांक में 0.10% और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.07% का उछाल देखा गया। बाजार आज सुबह सकारात्मक रुख के साथ खुले, लेकिन पूरे दिन सीमित दायरे में कारोबार हुआ। भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और वैश्विक बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी तथा कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के कारण बाजार पर दबाव भी बना रहा।
1: Benchmark domestic equity indices ended flat with a positive bias today. Sensex added 3 points to close at 77,541. Nifty rose by 20 points to settle at 24,252. In the broader market at the NSE, the mid-cap 100 index gained 0.10%, while the small-cap 100 index increased by 0.7%. Despite opening on a positive note in the morning, markets witnessed range-bound trading throughout the day due to geopolitical uncertainties, elevated global bond yields and high crude oil prices.
0: सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 16 कंपनियों के शेयर आज गिरावट के साथ बंद हुए। प्रमुख कमजोर शेयरों में ट्रेंट और मारुति में 1.51% से अधिक की गिरावट आई, जबकि इंडिगो 1.35% और एचसीएल टेक्नोलॉजी में 1.2% की गिरावट देखी गई। वहीं तेजी वाले शेयरों में पावरग्रिड 2.66%, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 1.17% और कोटक महिंद्रा बैंक 1.08% में लाभ देखा गया।
1: In the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 17 out of the 28 sectors registered gains. The top gainers were insurance that rose by 0.94%, utilities as well as mid-small private banks, a quality tilt around 0.7%, mid-small private banks added 0.65%. Among the laggards, FMCG and auto shed 0.68%. Housing finance fell by 0.61%, while hospitals lost 0.5%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive as shares of 2,240 companies advanced, 2,093 companies declined, and shares of 231 companies remained unchanged.
0: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में लगभग सपाट रहते हुए 95.71 पर बंद हुआ। एकेबी कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार।
0: मार्केट में आज लगातार दूसरे दिन एक सकारात्मक रुख देखा गया, इससे क्या ये मानकर चलना चाहिए कि सीमित दायरे में कारोबार किया जा रहा है या फिर बाजार में कहीं कोई तेजी आने की संभावना नजर आ रही है?
2: देखिए, सीमित दायरे में काम किया जा रहा है, जो धंधा लोग कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट निवेश कर रहे हैं, सीमित दौर से काम कर रहे हैं। जो दो तीन ट्रेंड जो है वो अभी भी मार्केट के मूवमेंट को इन्फ्लुएंस कर रही है। पहली बात तो यह है कि जो विश्व की जो राजनीतिक परिस्थिति है उसमें की जो अनिश्चितता, दूसरी कारण यह है कि जो बाजार में वैश्विक बाजार में जो जो बॉन्ड मार्केट में जो थोड़ा खलबली तो नहीं कहूँगा मैं, पर उसके यील्ड में जो उसका मतलब जो इंटरेस्ट रेट का बढ़ना, कॉस्ट ऑफ मनी में जो जो चढ़ाव हो रहा है, जो जो दाम बढ़े हैं वो है, और तीसरा जो है आपका जो क्रूड ऑयल का जो दाम जो है उसका आउटलुक। अभी तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो हैं ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रहे हैं, पर द लेटेस्ट जो जो ट्रंप साहब का जो ऐलान है कि वो एक इकोनॉमिक वार ईरान के ऊपर छेड़ेंगे, उससे क्रूड ऑयल मार्केट में एक उसका एक प्रभाव दिख रहा है। और ये तीनों चीज जो वैश्विक अनिश्चितता और जो बॉन्ड यील्ड में चढ़ाव और तीसरा आपका जो क्रूड ऑयल के दाम और यूएस की इकोनॉमिक सैंक्शंस को इकोनॉमिक वॉर वो करेंगे, एक न्यू डीडीए फॉर द इकोनॉमिक वॉर वो करेंगे, उससे काफ़ी मार्केट में और उसी का एक थोड़ा बहुत प्रतिफलन हमें डोमेस्टिक मार्केट में दिख रहा है। और जो कल जो मार्केट में जो हमने जो करीबन 0.8 और 0.9% वृद्धि देखी हमने सेंसेक्स में कल, उसका कारण भी ये था कि उनके पिछले 7 दिनों में काफ़ी नीचे था, वो जरा रिकवरी होकर स्टेबिलाइज किया है। पर अगर आप

0: is because Japan has clearly embarked on a new economic development strategy where more money is being pumped into to ramp up its pace of economic activity, which naturally is engendering this kind of inflationary potential in the economy. So it's a little bit of inflation, less than 2%, is a good sign for any economy. And I would say that there is also no panic. And if you see that, its stock market is also not reflecting any panic reaction to an inflation which is less than 2%.
1: So the Japanese are concerned because it's linked to wages. They want higher wages.
0: So if it is 2% or 1.5% or 1%, they expect better wages. So very simple.
2: सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, हालांकि इसका उत्पादन अनुमान से कम रहने की संभावना है। सरकार ने चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को देखते हुए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतें स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि वह स्थिति पर करीबी से नजर रख रहा है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में चीनी की कीमत बढ़ी है। पिछले महीने की 20 तारीख को चीनी की कीमत 48 रुपए प्रति किलोग्राम थी, जो कल बढ़कर करीब 55 रुपए प्रति किलोग्राम पर हो गई। एक ही भी इस खबर पर आपके क्या विचार होंगे, क्या कहना चाहेंगे आप?
0: देखिए जो हुआ है वो तो जो अक्टूबर से सितंबर का जो शुगर सीजन जो है उसमें जो स्टॉक लेवल जो सितंबर में आएगी वो लेवल जो कंफर्टेबल लेवल जो होता है उससे करीबन 1 मिलियन टन और 1.5 मिलियन टन कम होगा। इसीलिए सरकार का प्लान भी है कि वो रॉ शुगर 0% ड्यूटी में इंपोर्ट करने का भी उन्होंने एक निर्णय लिया है। वो अगर 1 मिलियन टन इंपोर्ट आ जाए उससे ज़रूर हमारी जो डोमेस्टिक शुगर प्राइसेस की जो स्थिति जो है उसमें उसमें कुछ कंट्रोल आएगी। पर उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि जो शुगर की जो एक डिमांड जो है वो एथेनॉल की सेक्टर को करीबन 2.4 मिलियन टन को एथेनॉल को जाती है, तो वो उससे भी ये प्रेशर बढ़ गया है। और क्योंकि इंपोर्ट का निर्णय लिया गया है, जो शुगर स्टॉक्स जो है अगर आप देखें स्टॉक मार्केट में आज की तारीख में शुगर स्टॉक्स में भी काफ़ी एक एडवर्स इम्पैक्ट आया है, क्योंकि जो शुगर कंपनियाँ जो हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ी बहुत कमी आएगी, इम्पोर्ट आने से उनके दाम घट जाएंगे। तो ये एक सार्वजनिक दृष्टिकोण है, पर मैं समझता हूँ कि शुगर इकोनॉमी एक बहुत बड़ी एक आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत एक महत्वपूर्ण सेक्टर है।
2: जी।
1: In more news, the unincorporated establishments in the non-agriculture sector continued their growth momentum in the first quarter of this financial year. Despite global uncertainties, the sector grew by 9.2% year-on-year for the April to June quarter, according to the quarterly bulletin of unincorporated sector enterprises released by the Ministry of Statistics and Program Implementation today. The estimated number of establishments increases 8.67 crore in this period. Employment in the unincorporated non-agricultural sector reached 13.7 crore, with the other services sector emerging as a key driver, recording employment growth of more than 21%. This was followed by the manufacturing sector, which registered growth of 10.06% in the estimated number of establishments and 6.6% in the estimated workforce. However, the unincorporated trade sector recorded a year-on-year decline of 7.88% in the estimated number of establishments and 7.29% in the estimated workforce. So your comments briefly on this, the unincorporated sector enterprises, the quarterly bulletin that's come out.
0: Well, I think the unincorporated sector is a very important sector. They represent the largest segment of the Indian industry. But I think it's important to note that the urban sector has done better than the rural sector in jobs. And there is a welcome trend that we see of how woman employment in these unincorporated sector has seen a significant rise. So both these developments, to my mind, are significant.
1: In more news, the Income Tax Department has said that over 6.5 crore income tax returns have already been filed for the assessment year 2026.

0: 2027. It includes more than 2 crore ITRs 3 and 4 till yesterday. The department has urged taxpayers to avoid the last-minute rush as the last day to file ITR 3, 4, 5 and 7 is before the 31st of this month.
1: सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लाभ छोटे और सीमांत किसानों सहित सभी किसानों तक पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए हैं इनमें से एक प्रमुख योजना प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा है जिसकी शुरुआत सितंबर 2018 में की गई थी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले कई वर्षों में इस योजना के तहत बजट आवंटन में काफी बढ़ोतरी हुई है इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं के लिए दामों में स्थिरता बनाए रखने के साथ साथ किसानों को उनके परिश्रम का उचित मूल्य दिलाना है योजना के अंतर्गत 2024-25 में वास्तविक खर्च लगभग 5,400 करोड़ रुपए था जो 2026-27 में बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया
0: In more news from the crude oil market, global crude oil prices rose today. Brent crude was trading 0.67% up at $94.41 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 0.48% higher at $87.25 per barrel when reports last came in. How concerned are you, AKB? Because even the Urals oil, which comes from Russia, is trading at $89 per barrel because what's happening between Russia and Ukraine in that war. And now you have the threat of economic D-Day on Iran by the US president. How concerned are we about global inflation here?
2: It is a cause for concern. If the situation persists, it will definitely mean a bigger burden on India's crude oil import costs. So therefore, and domestic oil companies, which have reasonably weathered the first few months of impact of the West Asian war, reasonably well, I would say, along with the government support of reducing the taxes and all that. If this remains at this level for some more time, it will be a cause for concern, prompting the government and the oil companies to take some more steps by which the bottom lines and protection is taken.
1: और आगे बढ़ते हैं भारतीय सर्राफा बाजार में 24 कैरेट वाला सोना आज 2.25% के उछाल के साथ 1,60,620 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था इस बीच चांदी 3.72% ऊपर चढ़कर 2,46,630 रुपए प्रति किलोग्राम थी एकेबी हमने अभी देखा कि पिछले 2-3 दिनों में सोना और चांदी दोनों में उछाल देखने को मिल रहा है इसके पहले एक दायरे के बाद से थोड़ी सी गिरावट भी देखी जा रही थी इस पर आपके क्या विचार हैं
2: देखिए फेस्टिवल सीजन शुरू हो गया है अगले हफ्ते राखी है राखी के सामने उसके बाद फेस्टिवल सीजन का आना होता है मैं समझता हूं कि अब गोल्ड की डिमांड भी बढ़ेगी और उसके दामों में भी थोड़ी बहुत वृद्धि होगी और उसी का एक आभास इशारा कर रहा है कि गोल्ड के दामों में और भी वृद्धि आने वाली है
1: एकेबी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत-बहुत आभार बहुत-बहुत धन्यवाद
2: थैंक यू
0: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic stock market indices end on a flat note. Sensex settled at 77,541. Nifty adds 20 points. India's foreign exchange reserves rise by $9.9 billion in the week ending August 14. And global crude oil prices rise. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.
1: Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें

100.1 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। दोस्तों आपका पसंदीदा गीत मेरे मनमीत लेकर एक बार फिर स्टूडियो से साथ हूँ मैं रोहिणी। कहते हैं मन की बातें गीतों के अंदाज में बयां हों तो दिल को और भी गहराई से छू जाती हैं। आज का गीत मेरे मनमीत कुछ इसी अंदाज में सजा है और कुछ यही अंदाज बयां कर रहा है। बड़े प्यारे अल्फाज हैं कि नजरों की बातें नजरों से कहां होती हैं, ये तो दिल से दिल की राह होती है। इन राहों पर चलते चलते 100.1 MHz पर खुद ब खुद हो जाती है। जी हाँ, आइए आज के मनमीत गीत मेरे मनमीत को बनाते हैं कुछ बहुत खास और चुरा लेते हैं इन गीतों के अंदाज से आपका भी दिल। 100.1 MHz पर आइए आगाज करें आज के गीत मेरे मनमीत का, इस गीत के साथ जो कि रचा बसा है आशा जी और रफी जी की आवाज में। इस गीत को अल्फाज दिए थे मजरू सुल्तानपुरी साहब ने और संगीत बद किया था आटी बर्मन जी ने। यादों की बारात फिल्म से ये गीत आप सुनेंगे, गीत मेरे मनमीत में 100.1 MHz पर।

जी श्रोताओं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये सदाबहार की तो यूं ही आपका मन चुराने आए हैं और चुराते रहेंगे. बड़े ही प्यारे अल्फाज हैं कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है. जी हाँ, कुछ दीवानगियां इस अंदाज में भी बयां होती हैं. जिंदगी में कुछ करना है तो खुद से वादा निभाना होता है, हर हाल में आगे बढ़ना और हर मुश्किल से टकराना होता है. 100.1 मेगाहर्ट्ज पर जी हाँ, बेहद सदाबहार, बेहद प्यारे गीतों का अंदाज आप सुन रहे हैं. ये अगला गीत हम किसी से कम नहीं फिल्म से आप सुनेंगे. आशा जी और रफी जी की आवाज में इस गीत को अल्फाज से सजाया है मजरू सुल्तानपुरी साहब ने और संगीत दिया है आटी पावन जी ने.

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं, नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

0: है चोरी।
1: सौ दशमलव एक मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं दोस्तों गीत मेरे मन में दिल, लेकिन फिलहाल आज इसे यहीं समेटती हूं और आपको छोड़े जाती हूं एक बेहद प्यारे से गीत के साथ जो कि है रफी साहब की आवाज में। फिलहाल मुझे यानी रोहिणी को दीजिए इजाजत, शुभ रात्रि, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एक अच्छी सी नींद लीजिए, लेकिन फिलहाल सुनते जाइए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया में आर्थिक चुनौतियों के बीच भारत को विकास की एक बड़ी उम्मीद के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सुधार उनकी सरकार की प्रतिबद्धता है और भारत विकास की गति बनाए रखने के लिए लगातार कदम उठा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार केवल नियमों में बदलाव नहीं ला रही बल्कि नियमों की पूरी नीति में बदलाव ला रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत हमेशा से साझा भविष्य की कामना में विश्वास करता आया है।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं और इन अनुभवों ने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी है, कोई चाहे या न चाहे हर देश का भविष्य, उसका फ्यूचर एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही है। आइसोलेशन में कुछ संभव नहीं है, इसलिए शेयर्ड फ्यूचर्स की ये थीम आज और भी अधिक प्रासंगिक हो गई है और भारत तो हमेशा से इसी भावना को लेकर चला है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़ी 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाले नशा मुक्ति केंद्र का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता BNS के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। श्री शाह ने कहा कि भाजपा के लिए देश, राज्य और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा उन्नत बनाने का एक अनूठा अवसर है।

उन्होंने कहा कि इसके साथ ही यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान में लगभग 12 अरब डॉलर का है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल मोबाइल फोन विनिर्माण योजना MPMS का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को मंजूरी दी। मंत्रालय ने इस योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी, AI, संचार, विनिर्माण, औषधि, डेटा सेंटर और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। महिला हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण के अपने पहले मुकाबले में भारत को नीदरलैंड्स से हार का सामना करना पड़ा। अम्स्टरडैम में खेले गए मुकाबले में नीदरलैंड्स ने भारत को 0-2 से हरा दिया। भारत की ये टूर्नामेंट में पहली हार है। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपी चंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की ये फैन और झांगशू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज निशिगंधा की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यारे गीत के साथ। फिल्म का नाम है सच्चा झूठा और आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। आइए सुनते हैं ये गीत।
1: यूं ही तुम

आप सुन रहे हैं निशिगंधा और निशिगंधा में आज कुछ ऐसी बातें आपके साथ साझा करते हैं जिन पर बात करना हम भूल जाते हैं। अक्सर क्या होता है ना कि हम खुद को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं, अच्छा दिखना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, हम अच्छा करना चाहते हैं, खुद को अच्छा साबित करना चाहते हैं और साथ ही हम अच्छा दिखना भी चाहते हैं। पर अच्छा हम कैसे दिख सकते हैं, ये जो पैमाना है ना, ये हर इंसान अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेता है। कुछ लोग खुद को संवार कर अच्छा दिखना चाहते हैं, कुछ अपने कर्मों को इतना अच्छा करते हैं कि उससे उनकी पर्सनालिटी में, उनके व्यक्तित्व में एक ग्रेस आ जाता है जिसके कारण वो अच्छा दिखते हैं। चेहरे की चमक जो होती है ना, वो कुछ सालों की मेहमान होती है, मगर आपके बिहेवियर की, आपके व्यवहार की खूबसूरती उम्र के साथ बढ़ती है। किस नरमी से बात करना है, कैसे बात करना है, ये भी आपके व्यक्तित्व की एक खूबसूरती होती है। किसी की परेशानी समझ लेना भी एक कला है। और कहते हैं ना कि ऐसा भी देखा गया है कि हर खूबसूरत इंसान आकर्षक नहीं होता, मगर एक अच्छा व्यवहार जो है, अच्छे व्यवहार वाला व्यक्ति आकर्षक भी होता है और वो याद भी रहता है। इसलिए जब भी खुद को देखना हो ना, तो कभी भी सिर्फ आईने में खुद को मत देखिए, यह भी देखिए कि आपके कारण कितने मन हल्के हुए, कितने लोगों के अंदर आपसे मिलने की दोबारा की चाहत जो है वो पैदा हुई, कितनी आंखों में आपने भरोसा जगाया, कितने रिश्तों को आपने प्रेम से बचाए रखा। और रात जब आपको मौका दे तो खुद से आप ये सवाल जरूर करिए, मैं सुंदर दिखती हूँ कि नहीं, ये सवाल नहीं, सुंदर बनती कितनी हूँ ये भी सवाल नहीं, ये कि मैंने कितने मन को सुंदर बना दिया है, ये सवाल खुद से करिए। चेहरा तो वक्त के साथ बदल ही जाता है, चेहरा तो वक्त के साथ बदल ही जाता है, किरदार ही है जो उम्र भर याद आता है, किरदार ही है जो उम्र भर याद आता है। अगला गीत फिल्म वक्त से, आवाज है महेंद्र कपूर और आशा भोसले की, आइए सुनते हैं ये गीत।

और अब एक ऐसी बात जिस समस्या से हम सभी ग्रस्त हैं। बात जब आती है संबंधों को चुनने की, दोस्त चुनने की, साथी चुनने की, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हमसे कोई सवाल पूछे कि आपका एक बहुत अच्छा, एक सच्चा साथी कौन है, एक अच्छा दोस्त कौन है, तो शायद अगर आप ईमानदार उत्तर तलाश करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास वो ईमानदार उत्तर नहीं होगा। आप सोचने लगेंगे कि सच्चे साथी की परिभाषा क्या होती है, सच्चे दोस्त की परिभाषा क्या होती है। सच्चा साथी वो नहीं होता जो हर पल आपके आसपास घूमता रहे या आपके आसपास रहे। सच्चा साथी, सच्चा दोस्त वो भी होता है जो दूर होकर भी आपके पास होने का एहसास दिलाए, जिसके सामने आपको किसी भी तरह का कोई अभिनय न करना पड़े। आप जो हैं बिल्कुल उस तरह से उसके सामने जाकर आप अपने आप को प्रेजेंट कर सके। और हाँ, एक सबसे जरूरी बात, सच्चा साथी, सच्चा दोस्त वो है जिसके सामने अगर आपके व्यक्तित्व का कोई सबसे कमजोर पहलू है, वो बताने में किसी तरह का कोई डर ना हो, और साथ ही सफलता साझा करने में आपको कोई हिचक भी ना हो। जहां प्रेम के साथ मित्रता हो, मित्रता के साथ प्रेम हो, ऐसा रिश्ता जो है ना, वो बहुत शोर शराबा नहीं करता, बस धीरे धीरे

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती और अब जो गीत आप सुनेंगे फिल्म का नाम है कॉलेज गर्ल तो आइए सुनते हैं ये गीत

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। और निशिगंधा का अगला गीत फिल्म बॉबी से, आवाज है शैलेंद्र सिंह की। आइए सुनते हैं

कितनी सुंदर बात है ना कि हमें कभी भी किसी की जिंदगी को देखकर अपनी जिंदगी का फैसला नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी के जीवन में सफलता जो है वो जल्दी मिलती है और किसी की देर से, मगर देर से मिली सफलता का अर्थ जो है वो हार नहीं है। आपको किसी और के जैसा बनने की भी जरूरत नहीं है, आपको बस अपने बेहतर रूप तक पहुंच जाना है। किसी भी तस्वीर के पीछे की कहानी क्या है ये हम नहीं जानते, इसलिए अपने जीवन को दूसरों के दिखते हुए जीवन के अनुसार कभी भी तौलना समझदारी नहीं कही जा सकती। आज हमने अपने कल से एक कदम अगर आगे बढ़ाया तो हम थोड़ा आगे चले और वो हमारी अपनी जीत है। तो इसलिए कहते हैं कि रात को

जब भी हम सोने जाएं ना तो सोने से पहले तीन अपनी छोटी बड़ी उपलब्धियों को जरूर याद करें। मन को तुलना से नहीं कृतज्ञता के साथ में सोने दीजिए। दूसरों की राह देखकर खुद को कम ना आंक। दूसरों की राह देखकर खुद को कम ना आंक। तेरी मंजिल का रास्ता भी अनोखा है। तेरी मंजिल का रास्ता भी अनोखा है। अगला गीत आशा भोसले की आवाज में फिल्म लव स्टोरी से।

एक बहुत खूबसूरत सी लाइन है कि गिला रखा तो दिल जगह घेरता गया, गिला रखा तो दिल में जगह घेरता गया, माफ किया तो रास्ता मेरा साफ हो गया। जनाब, ये जो माफ करने की बात होती है ना, ये अक्सर हमारे डेली रूटीन में, डेली लाइफ में हम सुनते रहते हैं कि जब भी किसी ने गलती की तो एक बात सुनाई देती है, माफ करो और आगे बढ़ो। पर ये माफ करना हमेशा दूसरों के लिए नहीं होता। अगर हमने माफ करने को अपनी आदत में शामिल किया तो ये हमेशा दूसरों के लिए नहीं है, ये कभी कभी अपने मन को मुक्त करने के लिए भी माफ करना देखा जाता है। जिसने दुख दिया उसके व्यवहार को सही नहीं कह सकते। अगर आपने माफ कर दिया, इसका मतलब ये नहीं था कि उसका व्यवहार सही था, बस उसके कारण अपने भीतर की कड़वाहट को हमने जाने दिया। कुछ लोग हमारे जीवन में बहुत सारा प्यार लेकर आते हैं और कुछ लोग बहुत सारी सीख लेकर के आते हैं। दोनों की ही भूमिका बिल्कुल अलग होती है।

और साथ ही एक बात और भी यहाँ पर होती है कि ये जो दो लोग आते हैं जीवन में, इनके साथ एक तीसरे तरह की भी लोग आते हैं, जहाँ जाकर हम कहते हैं कि हर रिश्ता उम्र भर साथ चलने के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते हमें खुद की कीमत समझाने के लिए भी हमारे जीवन में आते हैं, इसलिए बीते हुए लोगों को याद करते समय अपने वर्तमान के साथ अन्याय मत करिए। अपने जीवन को जीने का, अपने जीवन में आगे बढ़ने का हर व्यक्ति का अपना अधिकार होता है, और जो इसे याद करके आगे बढ़ते हैं ना, सफलता उनके ही कदम को चूमती है। इसलिए कुछ भी करिए, खुद को कभी भूलने मत दीजिए। रात आती है हमें याद दिलाने के लिए कि हमें खुद के साथ कितना वक्त खुद के लिए बिताना है। इसलिए माफ करना आदत में जरूर हो, लेकिन माफ करने का मतलब ये नहीं कि आप अपने जीवन पर इस बोझ के साथ रहें कि हमने माफ करके कहीं को गलती तो नहीं कर दी। जनाब, माफ करना इसलिए कि हम अपने मन के अंदर किसी कड़वाहट को जगह नहीं दे सकते। माफ करना बोझ बनकर हमारे दिल पर कभी घर नहीं बना सकता। सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा, और वक्त आ चला है कि हम आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 1 बजे एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ, आवाज है यशुदास की और फिल्म का नाम है टूटे खिलौने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया में आर्थिक चुनौतियों के बीच भारत को विकास की एक बड़ी उम्मीद के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सुधार उनकी सरकार की प्रतिबद्धता है और भारत विकास की गति बनाए रखने के लिए लगातार कदम उठा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार केवल नियमों में बदलाव नहीं कर रही, बल्कि नियमों की पूरी नीति में बदलाव ला रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत हमेशा से साझा भविष्य की भावना में विश्वास करता आया है।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं और इन अनुभवों ने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी है, कोई चाहे या न चाहे, हर देश का भविष्य, उसका फ्यूचर एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही है। आइसोलेशन में कुछ संभव नहीं है, इसलिए शेयर्ड फ्यूचर्स की ये थीम आज और भी अधिक प्रासंगिक हो गई है और भारत तो हमेशा से इसी भावना को लेकर चला है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधान नगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाले नशा मुक्ति केंद्र का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता BNS के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। श्री शाह ने कहा कि भाजपा के लिए देश, राज्य और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले महीने की 5 तारीख को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की चयन प्रक्रिया के जरिए किया गया है। पुरस्कार के लिए चुने गए 48 शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से एक हैं। इनमें 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षक शामिल हैं। पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पर्यटन क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेहतर इस्तेमाल करने की जरूरत है। जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक के बाद उन्होंने कहा कि अब पर्यटन को जिम्मेदारी के साथ बढ़ावा देने पर ध्यान देने की जरूरत है। भारतीय महिला पहलवान काजल डोचक ने लगातार दूसरी

शालीमार अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग में काजल ने फाइनल में चीन की जिंगरू सोन को 7-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। उधर 72 किलोग्राम वर्ग में भारत की तनु शर्मा और 62 किलोग्राम वर्ग में सविता ने रजत पदक अपने नाम किया। महिला हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण के पूल ई मुकाबले में भारत को नीदरलैंड्स से हार का सामना करना पड़ा है। अम्स्टलफेन में खेले गए मुकाबले में नीदरलैंड्स ने भारत को 0-2 से हरा दिया है। भारत की ये टूर्नामेंट में पहली हार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

खुद को पोशीदा न रखो बंद कलियों की तरह, खुद को पोशीदा न रखो बंद कलियों की तरह, फूल कहते हैं सब लोग तुम्हें तो महका करो, फूल कहते हैं सब लोग तुम्हें तो महका करो। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने की ये खूबसूरत महफिल और आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। गीत सुहाने की आज शुरुआत करते हैं जूली फिल्म के इस गीत के साथ और फिर करेंगे आपके साथ बहुत सारी बातें।

आ जाओ तसव्वुर में तस्वीर बना लेंगे, आ जाओ तसव्वुर में तस्वीर बना लेंगे, हम शामे जुदाई की तकदीर बना लेंगे। आ जाओ तसव्वुर में तस्वीर बना लेंगे, हम शामे जुदाई की तकदीर बना लेंगे। कैसे ही सही लेकिन कुछ ख्वाब हमें दे दो, कैसे ही सही लेकिन कुछ ख्वाब हमें दे दो, हम उनकी कोई रंगी ताबीर बना लेंगे, हम उनकी कोई रंगी ताबीर बना लेंगे। और अगला गीत फिल्म जानवर से, आवाज है मोहम्मद रफी की। आइए सुनते हैं ये गीत।

रात के बाद नए दिन की सहर आएगी, रात के बाद नए दिन की सहर आएगी, दिन नहीं बदलेगा तारीख बदल जाएगी। रात के बाद नए दिन की सहर आएगी, दिन नहीं बदलेगा तारीख बदल जाएगी। हंसते हंसते कभी थक जाओ तो छुप के रो लो, हंसते हंसते कभी थक जाओ तो छुप के रो लो, ये हंसी भीग के कुछ और चमक जाएगी, ये हंसी

भीग के कुछ और चमक जाएगी। वक्त नदियों को उछाले उड़ाए पर्वत, वक्त नदियों को उछाले कि उड़ाए पर्वत, उम्र का काम है गुजरना गुजर जाएगी, उम्र का काम गुजरना है गुजर जाएगी, रात के बाद नए दिन की सहर आएगी, दिन नहीं बदलेगा तारीख बदल जाएगी। अगला गीत एसपी बाला सुब्रमण्यम और आशा भोसले की आवाज में, फिल्म का नाम है सागर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। गीत सुहाने का अगला गीत फिल्म दोस्ती से आप सभी के लिए। आइए सुनते हैं ये गीत।

में ना कोई गुलाब रखे मेरी किताब दिल में ना कोई गुलाब रखे बस नाम तेरा और कोई पाक जवाब रखे बस नाम तेरा कोई और पाक जवाब रखे मिट्टी की सादगी में जो खुशबू दुआ सी है मिट्टी की सादगी में जो खुशबू दुआ सी है वही हमारी चाहत का ऊंचा मकाम रखे वही हमारी चाहत का ऊंचा मकाम रखे जब जब समय की धूप हमारे करीब आए जब जब समय की धूप हमारे करीब आए विश्वास अपनी चाह का गहरा मिसाल रखे विश्वास अपनी चाह का गहरा मिसाल रखे मेरी किताब दिल में ना कोई गुलाब रखे बस नाम तेरा और कोई पाक जवाब रखे बस नाम तेरा और कोई पाक जवाब रखे और अगला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म का नाम है आएगा आने वाला

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और गीत सुहाने में हम कर रहे हैं आपके साथ बहुत सारी बात।

रात ने धीमे से चांद से कहा, रात ने धीमे से चांद से कहा, तुम्हारी चुप्पी इतनी गहरी क्यों है? चांद मुस्कुराया, मैं हर उस दिल का आईना हूं जो बोल नहीं पाता, मैं हर उस दिल का आईना हूं जो बोल नहीं पाता। रात बोली, फिर ये तन्हाई किसकी है? रात बोली, फिर ये तन्हाई किसकी है? चांद ने उत्तर दिया, ये उन लफ्जों की है जो होठों तक आकर लौट जाते हैं। रात ठहरी, क्या कोई सुनता भी है इन्हें? चांद झुका, हाँ, जो रोशनी से नहीं एहसास से देखते हैं, जो रोशनी से नहीं एहसास से देखते हैं। रात ने आंचल फैलाया, तो आज मैं इन्हें समेट लूं? चांद ने सिर हिलाया, समेट लो वरना ये दर्द बन जाएंगे, समेट लो वरना ये दर्द बन जाएंगे। रात बोली, तुम हमेशा इतने शांत क्यों रहते हो? चांद ने कहा, क्योंकि शोर में सच्चाई नहीं होती, क्योंकि शोर में सच्चाई नहीं होती।

0: अब जो गीत आप सुनेंगे फिल्म का नाम है तीन देवियां, आवाज है किशोर कुमार की। साथ ही हम आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि 2 बजे एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। फिलहाल छोड़े जाते हैं आपको जिस गीत के साथ। फिल्म का नाम है तीन देवियां, हम आपको बता चुके हैं, आवाज है किशोर कुमार की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।
1: ये चीज खास मैंने उस अनजान देवी के नाम लिखी है जो शायद कहीं किसी जिंदगी के मोड़ पर मेरा इंतजार कर रही है, या यूं समझिए कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूं।

देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, जुल्फों में एक चेहरा कुछ जाहिर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया में आर्थिक चुनौतियों के बीच भारत को विकास की एक बड़ी उम्मीद के रूप में देख रहा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सुधार उनकी सरकार की प्रतिबद्धता है और भारत विकास की गति बनाए रखने के लिए लगातार कदम उठा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार केवल नियमों में बदलाव नहीं कर रही है, बल्कि नियमों की पूरी नीति में बदलाव ला रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत हमेशा से साझा भविष्य की भावना में विश्वास करता आया है।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं और इन अनुभवों ने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी है, कोई चाहे या न चाहे, हर देश का भविष्य, उसका फ्यूचर एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही है। आइसोलेशन में कुछ संभव नहीं है, इसलिए शेयर्ड फ्यूचर्स की ये थीम आज और भी अधिक प्रासंगिक हो गई है और भारत तो हमेशा से इसी भावना को लेकर चला है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। सरकार ने फिर कहा है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। श्री जायसवाल ने विदेशी ध्वज वाले दो जहाजों से संबंधित घटना के बारे में कहा कि सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले महीने की 5 तारीख को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की चयन प्रक्रिया के जरिए किया गया है। पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पर्यटन क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेहतर इस्तेमाल करने की जरूरत है। जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक के बाद उन्होंने कहा कि अब पर्यटन को जिम्मेदारी के साथ बढ़ावा देने पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों में भारत में पर्यटकों की संख्या 3 गुना बढ़ी है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने ढाका के बंग भवन में बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। कार्यवाहक अध्यक्ष बैरिस्टर कैसल कमाल ने उन्हें शपथ दिलाई। बांग्लादेश में संसद में मतदान के माध्यम से अंतिम राष्ट्रपति चुनाव 8 अक्टूबर 1991 को हुआ था। स्विट्जरलैंड के लुसाने में हुई डायमंड लीग में भारत के नीरज चोपड़ा ने 88.05 मीटर भाला फेंककर दूसरा स्थान हासिल किया। श्रीलंका के रुमेश फथीराज ने 88.14 मीटर के थ्रो के साथ नीरज को सिर्फ 9 सेंटीमीटर के अंतर से पीछे छोड़कर पहला स्थान हासिल किया। ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स 86.69 मीटर थ्रो के साथ तीसरे स्थान पर रहे। महिला हॉकी विश्व कप में दूसरे दौर के पुल मुकाबले में नीदरलैंड्स ने भारत को 0-2 से हरा दिया है।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयति। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और रात सुरमई में पहला गीत किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म का नाम है गोलमाल।

रात ने आकाश पर अपनी स्याही बिछाई, रात ने आकाश पर अपनी स्याही बिछाई, चांद ने उसमें हल्की सी चांदी घोल दी, और तन्हाई ने दोनों के बीच बैठकर अनकहे भावों की लकीरें खींच दी। कहीं कोई शब्द नहीं था, पर सब कुछ स्पष्ट था, जैसे कोई पुराना रिश्ता बिना आवाज के फिर से जी उठा हो, और समय बस किनारे बैठा देखता रह गया कि गहराई हमेशा शोर नहीं करती, कि गहराई हमेशा शोर नहीं करती। रात ने आकाश पर अपनी स्याही बिछाई, चांद ने उसमें हल्की सी चांदी घोल।

बात अगर प्रेम की करें तो प्रेम कोई उच्चारण नहीं, एक दीर्घ श्वास है जो भीतर उतरकर समय को भी विराम देता है। जीवन की धूल में जब पांव थकने लगते हैं, वही प्रेम है जो थाम कर रास्ता नया देता है। यह कोई उत्सव नहीं जो सजा कर जी लिया जाए, यह तो वह ताप है जिसमें मन स्वयं को गढ़ता है, कभी आंसू की तरह, कभी अनकही हंसी की तरह। यह हर रूप में आकर हमें थोड़ा और मनुष्य करता है। जीवन की परतों में छिपा एक मौन सा स्पंदन, प्रेम वही है जो बिना मांगे भी साथ रहता है। प्रेम वही है जो बिना मांगे भी साथ रहता है। अगला गीत अनुराधा पौडवाल की आवाज में, फिल्म का नाम है साजन।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। रात सुरमई में अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है आज का अर्जुन और आवाज है लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

जीवन ने जो प्रश्नों की लंबी पंक्तियां लिखी, प्रेम ने उत्तर बनकर हर अक्षर को सहलाया। कभी छांव की तरह, कभी अनजानी धूप सा, उसने हर टूटन में भी एक अर्थ रचाया। यह संबंधों की परिधि में बंधता नहीं कभी, यह तो खुला आकाश है जिसमें सब समा जाता है। जहां तर्क थक कर बैठ जाते हैं रास्तों के किनारे, वहीं प्रेम चुपचाप चलकर भी मंजिल बना जाता है। जीवन की कठोर धुनों के बीच प्रेम ही वह स्वर है जो गीत रचता जाता है, जो गीत रचता जाता है।

देर बाद यानी 3 बजे एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ, फिल्म का नाम है मासूम, आवाज है आरती मुखर्जी की। तो आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया में आर्थिक चुनौतियों के बीच भारत को विकास की एक बड़ी उम्मीद के रूप में देखा जा रहा है।

0: उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सुधार उनकी सरकार की प्रतिबद्धता है और भारत विकास की गति बनाए रखने के लिए लगातार कदम उठा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार केवल नियमों में बदलाव नहीं कर रही है बल्कि नियमों की पूरी नीति में बदलाव ला रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत हमेशा से साझा भविष्य की भावना में विश्वास करता आया है।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं और इन अनुभवों ने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी है, कोई चाहे या न चाहे हर देश का भविष्य, उसका फ्यूचर एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही है। आइसोलेशन में कुछ संभव नहीं है, इसलिए शेयर्ड फ्यूचर्स की ये थीम आज और भी अधिक प्रासंगिक हो गई है और भारत तो हमेशा से इसी भावना को लेकर चला है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाले नशा मुक्ति केंद्र का भी उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता BNS के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। मणिपुर में इम्फाल दीमापुर गुवाहाटी मार्ग पर लगभग 3 साल के अंतराल के बाद सार्वजनिक परिवहन सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। ये कदम राज्य में सामान्य स्थिति और आपसी संपर्क को बहाल करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर कुल 125 यात्रियों ने यात्रा की। हिमाचल प्रदेश के 36 सरकारी प्रबंधन वाले मंदिरों में 1 जनवरी 2024 से 1 अगस्त 2026 के बीच करीब 419 करोड़ 88 लाख रुपए का चढ़ावा मिला है। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विधानसभा में बताया कि राशि मंदिरों के रखरखाव, साफ सफाई, धार्मिक कार्यक्रमों, मेलों और पुजारियों और कर्मचारियों के वेतन पर खर्च की जाती है। यूक्रेन के मध्य हिस्से के क्रिवी री शहर में रूसी ड्रोन हमले में 15 लोगों की मौत हो गई और 130 लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों के अनुसार घायलों में 23 बच्चे भी शामिल हैं। ये हमला एक शॉपिंग मॉल को निशाना बनाकर किया गया। क्रिवी री यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की का गृहनगर है। स्विट्जरलैंड के लुसाने में हुई डायमंड लीग में भारत के नीरज चोपड़ा ने 88.05 मीटर भाला फेंककर दूसरा स्थान हासिल किया। श्रीलंका के रुमेश पथिराज ने 88.14 मीटर के थ्रो के साथ पहले स्थान पर रहे। ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स 86.69 मीटर भाला फेंककर तीसरे स्थान हासिल किया। महिला हॉकी विश्व कप में दूसरे दौर के पूल मुकाबले में नीदरलैंड्स ने भारत को 2-0 से हरा दिया है। भारत की यह टूर्नामेंट में पहली हार है। नीदरलैंड्स के दोनों गोल पेनल्टी कॉर्नर से हुए। युब्बी यानसेन और फ्रेडरिके मार्टला ने एक एक गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

तुम्हारे सिवा कौन कर सकेगा मुझे तुमसा प्रेम, तुम्हारे सिवा कौन कर सकेगा मुझे तुमसा प्रेम, आता भी किसको है ऐसा जादू वादू करना, सिर्फ तुम्हारे आने से खिलता है तन और महक उठती है मन की मौलश्री। सौदेश प्लो 1 MHz पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 3:12 और 3 सेकेंड। हमराही प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत किशोर कुमार और आशा जी की आवाज़ के साथ।

कभी कभी ना दोस्ती इतनी नजदीक आ जाती है कि कब वो प्यार में बदल जाती है हमें खुद भी पता नहीं चलता। उसका एहसास हमें तब होता है जब वो इंसान हमसे दूर चला जाता है। फिर हमें समझ में आता है कि अरे हमारे दिल को तो उसकी आदत पड़ गई है, अब उसे तलाशा कहाँ जाए। कभी कभी लगता है कि कुछ रिश्ते शुरुआत से ही अपना अंजाम लिखवा कर आते हैं, हम उसे पहचान नहीं पाते, और पहचान भी लेते हैं तो उसे वो जगह नहीं दे पाते जितनी जगह वो डिजर्व करते हैं। अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में।

0: आपको पता है इश्क में ऐसा ही होता है, दुनिया की सारी रस्में टूट जाती हैं, सारी कस्में टूट जाती हैं, साथ रहता है तो बस दो लोगों का साथ रहता है, एक पूरी दुनिया होती है दो लोगों के साथ में, जैसे अभी आपका और हमारा साथ है, इस साथ में भी कहीं ना कहीं एक अपनी दुनिया है। इस दुनिया को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अगला गीत।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

अगर दिल की बात को कहना इस गाने की तरह आसान होता तो ये जिंदगी कितनी आसान हो जाती। लेकिन सच्चाई यही है कि हम दोस्तों से बात कर सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, लेकिन जिसे हमें अपने दिल की बात बतानी है, जिसके लिए हमने सपने संजोए हैं, उससे ये बात कहना कितना मुश्किल होता है। जब भी ये बात कहने की बात आती है कि हम आपको चाहते हैं, ये कहना वाकई

बहुत मुश्किल होता है। तब ऐसा लगता है कि इस संसार के जितने भी शब्द हैं, जितनी भी भाषा है, वो गायब हो गई है या ख़त्म हो गई है। बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी लगता है कि इस गाने की तरह हिम्मत करके, थोड़ी सी थोड़ा सा साहस करके

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

हर लफ्ज़ के तमाम मुआनी में हम भी थे, हर लफ्ज़ के तमाम मुआनी में हम भी थे, क्या दौर था कि तेरी कहानी में हम भी थे। उठती है एक कसक तेरी तस्वीरें देखकर, उठती है एक कसक तेरी तस्वीरें देखकर, ताज़ा में हम नहीं हैं, पुरानी में हम भी थे। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 104.1 MHz पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 3:45 और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हमराही। अगला गीत मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में।

चोरी चोरी से? ना ना, हम तो पूरे ऐलान के साथ आपके साथ हैं, क्योंकि आपका और हमारा रिश्ता ही ऐसा है जहां हम जुड़ते हैं दिल से दिल तक. अगला गीत आप ही के लिए.

अब जब ये गाना मैं सुन रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जो सपने बहुत लंबे इंतजार के बाद पूरे होते हैं, तो उन सपनों के पूरे होने की जो खुशी होती है उसे बयां करना बहुत मुश्किल होता है. उसे हम शब्दों में बयां नहीं कर पाते. चाहे वो सालों के इंतज़ार के बाद हमने अपने पसंद की कोई गाड़ी ली हो, कोई घर लिया हो, हमें अपने पसंद की कोई जॉब मिली हो, या फिर वो इंसान हमने पाया हो जिसकी हम बहुत दिनों से मुराद कर रहे थे, दुआ मांग रहे थे कि काश ये इंसान हमें मिल जाए. और वो इंसान जब हमें मिलता है, वो प्यार हमें मिलता है, तो आसपास की जो पूरी दुनिया होती है वो और ज़्यादा खूबसूरत और सुंदर लगने लगती है. और ये इस दुनिया में हमारा यकीन और ज़्यादा बढ़ने लगता है. तो अगर आप प्यार में हैं तो ये गीत सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए.

हमराही में आज के लिए बस इतना ही. अब से थोड़ी देर में यानी कि 4 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार. अब से फिर मुलाकात होगी 4:10 पर हमारी अगली प्रोग्राम में. आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया में आर्थिक चुनौतियों के बीच भारत को विकास की एक बड़ी उम्मीद के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सुधार उनकी सरकार की प्रतिबद्धता है और भारत विकास की गति बनाए रखने के लिए लगातार कदम उठा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार केवल नियमों में बदलाव नहीं कर रही बल्कि नियमों की पूरी नीति में बदलाव ला रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत हमेशा से साझा भविष्य की भावना में विश्वास करता आया है।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं और इन अनुभवों ने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी है

0: कोई चाहे या न चाहे, हर देश का भविष्य, उसका फ्यूचर एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही है। आइसोलेशन में कुछ संभव नहीं है। इसलिए शेयर्ड फ्यूचर्स की ये थीम आज और भी अधिक प्रासंगिक हो गई है, और भारत तो हमेशा से इसी भावना को लेकर चला है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक आज होगी, जबकि ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक कल होगी। बैठक की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक में 11 ब्रिक्स सदस्य देशों के खेल मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले महीने की 5 तारीख को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की चयन प्रक्रिया के जरिए किया गया है। मणिपुर में इम्फाल दीमापुर गुवाहाटी मार्ग पर लगभग 3 साल के अंतराल के बाद सार्वजनिक परिवहन सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। ये कदम राज्य में सामान्य स्थिति और आपसी संपर्क को बहाल करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर कुल 125 यात्रियों ने यात्रा की। अमेरिका के अलास्का में घने कोहरे के बीच एक छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में विमान में सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 पायलट और 6 यात्री शामिल हैं। स्विट्जरलैंड के लुसाने में हुई डायमंड लीग में भारत के नीरज चोपड़ा ने 88.05 मीटर भाला फेंककर दूसरा स्थान हासिल किया। श्रीलंका के रुमेश पथिराज 88.14 मीटर की थ्रो के साथ पहले स्थान पर रहे। ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स ने तीसरा स्थान हासिल किया। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यी फैन और झांग शू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इस जीत के साथ इस जोड़ी ने भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर दिया है। सेमीफाइनल मुकाबला आज खेला जाएगा। महिला हॉकी विश्व कप में दूसरे दौर के पुल मुकाबले में नीदरलैंड्स ने भारत को 2-0 से हरा दिया है। भारत की यह टूर्नामेंट में पहली हार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi has said India is being seen as a bright spot of growth throughout the globe, even as the world has many concerns regarding growth and resources are getting weaponized. Addressing the Economic Times World Leaders Forum in New Delhi last evening, the Prime Minister said the International Monetary Fund forecast that India will remain the world's fastest growing major economy. He said, India continues to take several steps to ensure continued growth momentum and that reforms are a commitment of his government. Mr. Modi said, India has moved away from a production-linked punishment model during earlier governments to production-linked incentives now. He alleged it was the policy of earlier regimes to keep people in scarcity so that they would beg from the government for even basic needs. Talking about the seven powers representing seven key streams, which he spoke about.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और मैं हूं आपके साथ मंजू। वक्त हुआ है 4:11 और 7 सेकंड। अरुणिमा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत।

अरुणिमा, एक ऐसा प्रोग्राम जहां हम जिंदगी की उलझनों से निकलकर उम्मीद की रोशनी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं अपने कुछ गानों के साथ, अपनी कुछ बातों के साथ. तो चलिए फिर इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं किशोर कुमार की आवाज़ के साथ.

जिंदगी की असली सच्चाई तो यही है कि हार के बाद ही जीत मिलती है। अब जिंदगी है तो मुश्किलें तो आएंगी ही, लेकिन इन मुश्किलों में हमें बहुत हिम्मत रखने की, बहुत हौसला बनाए रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हमने अपने आप पर विश्वास करना छोड़ दिया तो शायद हम जिंदगी हार जाएंगे। लेकिन जब मुश्किल दौर हो तो अपने आप से प्यार थोड़ा ज़्यादा करना, क्योंकि आप ही वो इंसान हैं जो अपने ऊपर बीत रहे असफलताओं को, संघर्ष को जानते हैं। अब वक्त से बड़ा मित्र और कोई भी नहीं होता, तो अपने साथ हमेशा बहुत ज़्यादा पोलाइट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके संघर्ष सिर्फ आपके हैं। अगला गीत आप ही के लिए।

इस गाने की सबसे खूबसूरत लाइन पता है मुझे कौन सी लगती है? वो वाली जब रानी मुखर्जी कहती है कि चांद का टीका लगा के, मत्थे लगा के रात दिन तारों में जीना वीना इजी नहीं. मतलब गुलजार साहब की लेखनी ही ऐसा लिख सकती है कि कंगाली के दिनों में जिंदगी को चुनौती देने की जो कोशिश है वो सच में जिंदगी को फिर से एक गहरी सोच के साथ, एक गहरे कमबैक के साथ साबित करने पर मजबूर कर देती है, सोचने पर मजबूर कर देती है. और जिंदगी का रवैया भी ऐसा ही होना चाहिए. जब आपके दिन सही नहीं है या जब चीजें आपके मुताबिक नहीं हो रही हो, तब भी जो जोश है वो इस गाने की तरह ही होना चाहिए. क्या आपने कभी जिंदगी के अंदर की जो तेज धड़कन है उसको महसूस किया है? अगर किया है तो फिर आपसे बड़ा विजेता तो कोई और नहीं है. अगर जिंदगी आगे बढ़ने की या अपनी मंजिल को पाने की सीटी बजा रही है तो फिर आपको आपका आगे बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. अगला गीत आप ही के लिए.

वाकई जब दिल और दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, फिर कोई भी चुनौती

जिंदगी से आपको कुछ और उम्मीदें हैं, जो शायद जिंदगी से बड़ा सोचते हैं कि उन्हें वो मिले, और आज आपका वक्त वैसा नहीं है जैसा आप चाहते हैं, तो अपनी कोशिश को कभी नहीं रोकना, क्योंकि जिंदगी स्वर्ण अक्षरों में एक ना एक दिन लिखी जरूर जाएगी, क्योंकि ईश्वर हर किसी को उसके हिस्से का आसमान देता जरूर है, चाहे उसमें थोड़ा वक्त लग जाए। अगला गीत अभी के लिए

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

100.1 MHz पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ और मैं हूं आपके साथ मंजू। वक्त हुआ है 4:47 और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अरुणिमा, एक ऐसा प्रोग्राम जहां हम जिंदगी की उलझनों से निकलकर उम्मीद की रोशनी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, कुछ उम्मीदों के साथ, कुछ बातों के साथ, कुछ गानों के साथ। तो ये अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में।

पूरे दिन की एनर्जी ऐसी भले ना हो लेकिन सुबह की शुरुआत में एनर्जी इस गाने की तरह होनी चाहिए. क्या कहते हैं आप? मुझे मालूम है आप मेरे साथ हैं. और ये जो मेरी आवाज में आपको एनर्जी सुनाई दे रही है ना, इसका जादू भी आप ही की वजह से है. क्योंकि जब जब जब ऐसा लगता है कि आप सुन रहे हैं हमें, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हमें तो लगता है कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं. अगर आज आप जिंदगी के किसी ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां पर आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होने वाला है या आगे कैसे बढ़ें, तो आपको बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं बनानी है कि जिंदगी में ये करना है वो करना है. बस एक कदम आगे बढ़ाना है. एक कदम आगे बढ़ाने से ये होगा कि आपको मंजिल भले ही नजर ना आए लेकिन रास्ते साफ जरूर दिखाई देने लगेंगे.

वाकई जिंदगी हंसने गाने के लिए है और इसे ऐसे ही बीतना चाहिए। अरुणिमा में आज के लिए बस इतना ही। अब से थोड़ी देर में यानी कि 5 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। अब से फिर मुलाकात होगी 5:10 पर हमारे अगले प्रोग्राम में। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार केवल नियम नहीं बदल रही बल्कि नियम बनाने की सोच भी बदल रही है। उन्होंने कहा कि भारत अब उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI के जरिए उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और देशों के बीच अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इसके बावजूद भारत को दुनिया में विकास और उम्मीद की एक बड़ी किरण के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विकास के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इनमें विनिर्माण, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, तकनीक और नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्री अर्थव्यवस्था शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। उन्होंने डिजिटल क्षेत्र में भारत की प्रगति और तेज 5G विस्तार का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 50 लाख से अधिक परिवार प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि PM कुसुम योजना से किसानों को बिजली की लागत कम करने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं, महिलाओं, किसानों और मध्यम वर्ग के लिए जीवन आसान बनाने और कारोबार को सुगम बनाने पर लगातार काम कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत की प्रगति से वैश्विक स्थिरता भी मजबूत होगी। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप्स संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक आज होगी जबकि ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक कल होगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक में 11 ब्रिक्स सदस्य देशों के खेल मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख भाग लेंगे। इससे पहले भारत की अध्यक्षता में जयपुर में हुई ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक कल जयपुर घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी देने के साथ संपन्न हुई। जयपुर घोषणा पत्र में ब्रिक्स देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन, कौशल विकास और सुविधाजनक यात्रा जैसे क्षेत्रों पर जोर दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले महीने की 5 तारीख को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की चयन प्रक्रिया के जरिए पूरा किया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर कड़ी नजर रखने के भी निर्देश दिए हैं। मणिपुर में इम्फाल दीमापुर गुवाहाटी मार्ग पर लगभग 3 साल के अंतराल के बाद सार्वजनिक परिवहन सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। ये कदम राज्य में सामान्य स्थिति और आपसी संपर्क को बहाल करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर कुल 125 यात्रियों ने यात्रा की। स्विट्जरलैंड के लुसाने में हुई डायमंड लीग में भारत के नीरज चोपड़ा ने 88.05 मीटर भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। स्लोवाकिया में चल रही अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की काजल ढोचक ने महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 18 वर्षीय काजल ने फाइनल में चीन की जिंगरू सन को 7-0 से हराकर विश्व खिताब अपने नाम किया। काजल इससे पहले 2024 में अंडर-17 विश्व चैंपियन और 2025 में अंडर-20 विश्व चैंपियन का खिताब भी जीत चुकी हैं। भारत की तनु शर्मा और सविता ने भी प्रतियोगिता में रजत पदक जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi has said that reforms are not a compulsion but a commitment and conviction for his government and that its policies are pro-people, pro-growth and pro-development. Addressing the Economic Times World Leaders Forum in New Delhi last evening, Mr. Modi said his government has created a clear roadmap for reforms with the primary focus being on reforms at the governance level. He said, India is undertaking next generation reforms at the policy level to secure the country's future.
2: 15 August ko maine lal kile se sapta dhara ki sapta shaktiyon ki baat ki hai aur isliye Bharat aaj policy level par next generation reforms kar raha taki hamara future surakshit ho, governance par reforms kar raha hai, ease of living ke liye reforms kar raha hai.
1: The Prime Minister pointed out that his government is not merely changing regulations but is changing the entire philosophy behind them. He said that earlier the approach to regulations was prohibited unless permitted. He said the government is transforming this approach and moving towards permitted unless prohibited. The Prime Minister also spoke about the global economic environment, saying that the weaponization of resources and growing mistrust were creating new challenges. He said that even in such circumstances, the world continues to see India as a bright spot of hope and growth. The Union Home Minister Amit Shah has reiterated that the zero tolerance policy against illegal immigrants will continue.

मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और मैं हूं आपके साथ मंजू। वक्त हुआ है 5:11 और 10 सेकेंड। शुरू हो चुका है प्रोग्राम भोर सुहानी। प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। भोर सुहानी ये वो समय है जब हमारा मन सबसे ज़्यादा शांत होता है, और जब हमारा मन शांत होता है तो हम खुद के ज़्यादा नज़दीक होते हैं, और जब हम खुद के नज़दीक होते हैं तो फिर ईश्वर तक पहुँचना बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए फिर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ के साथ।

कपूर की सबसे बड़ी सीख यही है कि सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। जब हम मन से सच्चे हो जाते हैं तो भक्ति अपने आप सुंदरता बन जाती है। सावन का महीना है यानी शिव का महीना है। जब सावन और शिव साथ साथ चलते हैं तो मन स्वतः अलौकिक भाव से भर जाता है।

इस भजन को सुनते हुए ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो स्वयं उस दिव्य शिव विवाह की झांकी के साक्षी बन गए हों हम सभी। यही तो हमारे महादेव की महिमा है। शिव भक्ति हमें सिखाती है कि प्रभु के द्वार पर कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई सुंदर या कुरूप नहीं होता। जो जैसा भी है, सच्चा भाव लेकर अगर शिव के चरणों में आ जाए तो भोलेनाथ उसे सहर्ष अपने द्वार पर जगह अवश्य देते हैं।